ये वो लोग हैं कि जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं।

0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

कोई है जो आवाज देता है, कोई है जो हर दिल में रहता है, कोई है जो आसमां से पानी बरसाता है।

एक खुशबू सी फैल जाती है। परिंदे चहचहाते हैं, प्यार भरे गीतों से जग को फिर जगाते हैं। हर तरफ से एक ही सदा आती है और हमको ये समझाती है कोई है

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
0: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
0: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
3: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
4: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
0: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूले हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs, कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा. जुमेरात 17 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर. हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया. ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा.
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: सोशल मीडिया सार्फीन, खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीने रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिले सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिक इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
7: शराइत और ज़वाबित लागू है.
8: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
10: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
11: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
0: and
12: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
0: and
13: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
0: and
14: Tabal Family Mixture laye, Umrah par jaye
0: and
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL
0: and
15: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. आज मैं जरा लेट होगी क्योंकि मैं डिफेंस से निकलते हुए बड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी एक जगह तो. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या मुझे लगा था कि आज तो मुश्किल ही है लेकिन खैर पहुंच गई हूँ. अलबत्ता पक्के दोस्त का टाइम चला गया है और पक्के दोस्त मेरे प्यारे पक्के दोस्त आज स्कूल चले गए होंगे. होपफुली बच्चे टाइम पे पहुंच गए होंगे. कराची का कुछ नहीं पता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है. एंड हेलो सैयद उमैर, हेलो फातिमा उमैर, हाउ आर यू. सो या सो थैंकफुली आई एम हेयर अल्हम्दुलिल्लाह. और हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आइए सुनते हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा. और ये बहुत ही प्यारी सूरह है, सारी सूरतें प्यारी हैं. और तो हम कल हमने आयत नंबर 17 तक पढ़ा, आइए पढ़ते हैं आगे. औज़ुबिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और अगर तुम छुटलाओगे तो तुमसे पहले कितने ही गुरुह छुटला चुके हैं और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है. और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह पैदा करने वाले की इब्तिदा कैसे करता है, फिर उसे दोबारा बनाएगा. बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है. और आप सुन रहे थे सूरह अनकबूत का तर्जुमा आयत नंबर 19 से. जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें, भले आपको इंग्लिश में पढ़ना है या उर्दू में पढ़ना है लेकिन समझ के पढ़ें. और कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहें, गौर फिक्र करते रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज उसमें नजर आती है. तो कुरान से अपना रिश्ता बनाएं, कुछ वक्त अपने दिन में कुरान को जरूर जरूर दें, राइट, और उसके बारे में गौर व फिक्र करें. और राइट, और हम लोग जो हैं अपने शो का आगाज करते हैं. अब आपको टॉपिक भी बताते हैं, आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ भी रहे हैं. और गुड मॉर्निंग एनजीक, आपको लग रहा था कि मैं छुट्टी कर रही होंगी लेकिन नहीं. ओके, और आई एम हेयर. और आज का मेरा टॉपिक जो है वो बड़ा एक आसान तरीन टॉपिक है. और वो टॉपिक ये है कि आपका निक क्या है, व्हाट इज योर निक, आपका निक नेम क्या है. और प्यार से आपको लोग क्या बुलाते हैं. अब आप ये भी कह सकते हैं कि कोई आपको प्यार से नहीं बुलाता. मुझे तो कोई भी नहीं बुलाता. तो ऐसा होता है कुछ लोगों को, प्यार से क्या बुलाया, जब भी बुलाया डांट के बुलाया. तो खैर ये खैर आई एम श्योर कि आपका कोई प्यार भरा नाम होगा. और बहुत जरूरी है कि जो है ना वो आपका कोई नाम हो, अच्छा सा नाम हो, जैसे बबलू और गुड्डू मुन्नू ऐसे नाम होते थे पुराने जमाने में, तो यही नाम होते थे, गुड़िया और मुन्नी मुन्ना. अब तो खैर अब नाम छोटे हो गए हैं बच्चों के, आलियान है तो आली, और तो हर एक का नाम है शैज सब. लेकिन माँ बाप ना अपने बच्चों का जरूर कोई ना कोई प्यार भरा नाम रखते हैं क्योंकि वो नाम बड़ा मुश्किल सा होता है दुनिया के लिए, लेकिन प्यार भरा नाम बड़ा क्यूटी होता है. और क्यूटी पाए तो ये हनी, खैर वो तो हस्बैंड वाइफ दूसरे को हनी कह रहे. और राइट, तो खैर आपका आपको लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, अगर प्यार से बुलाते हैं तो हमें जरूर बताएं, हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट आजय समिया इंस्टाग्राम पे. आज हम जानना चाहते हैं कि आपका निक क्या है, व्हाट इज योर निक नेम. ओके, अम्मी कॉल मी नीडो एंड सैम कॉल मी एनजीक. अच्छा, आई एम श्योर कि आपका नाम है एनजीके, राइट, बिकॉज आई लाइक दिस एनजीक इज नाइस, राइट. तो ओके, तो मैंने आपका नाम रख दिया पूरी दुनिया के लिए एनजीक. और आपका नाम नीडो है, नीडो इस नीडो और नीडो, आई थिंक नीडो सही है, राइट. और आई एम श्योर कि आप नीडो बेबी भी होंगे. और राइट, तो हमें आप इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. और सैयद माहरुख आमिर कह रही है कि माहा नाम है, प्यार से लोग मुझे माहा कहते हैं, क्यूट. माँ वैसे भी बड़ा प्यारा नाम है, आई लव. अच्छा, मुझे एम वाले नाम भी बड़े प्यारे लगते हैं, एम एम एंड एन, दे आर लाइक रियली नाइस नेम. एस से तो मेरा नाम आता है तो एस के नाम भी बड़े प्यारे हैं. आप लोग भी बताएं कि आपको लोग प्यार से क्या बुलाते हैं. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. और अभी हम प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक.

0: That's not my name.
1: Hey, वो ये कह रही है कि मेरा नाम ये नहीं है, लोग आपका नाम सही नहीं लेते. तो ये एक बड़ी बात है कि लोगों को चाहिए, लोग कितनी मेहनत नहीं करते. अगर किसी का नाम थोड़ा सा ट्रिकी या मुश्किल है तो वो सीखने की कोशिश नहीं करते. लेकिन एक नाम इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. नाम एक पहली चीज है जो उसे दुनिया में आकर मिलती है और उस नाम की बड़ी इज्जत करनी चाहिए. अच्छी कहते हैं कि माँ बाप का फर्ज है कि औलाद को अच्छा नाम दें, और औलाद का फर्ज है कि अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें, जग में रोशन नाम करेगा. तो बड़ी उम्मीदों से वो अपने बच्चे का नाम रखते हैं, उसे इतना कुछ सिखाते हैं. उस्मान हफीज कहें, नो प्रॉब्लम समीहा, आई विल गिव यू द नेम, इट शुड बी सैम और सीमी. नाउ इट्स अप टू यू, चूज योर सेल्फ. एंड बाय द वे माइन इज मानी एंड ऑल मोस्टली फ्रेंड्स यूज टू कॉल मी उस्मी. मेरे बहुत नाम है साथ और मुझे लोग सैम ही कहते हैं. सैम और सीमी तो कोई नहीं कहता वैसे, सैम ही कहते हैं. सैम अम्मी तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं, छम्मो, नानी छमिया, छम्मो, इस तरह की एम्बेरसिंग नाम भी वो रखते थे. और क्या कहते हैं, और स्कूल में लड़के छमिया छमिया भी बहुत कहते थे. कोई गाना आ जाए तो मेरे सुना रहे होते थे मुझे. और स्कूल में मैं ऐसी नहीं थी, स्कूल में मैं बहुत ही शाई टाइप्स थी मैं. अब मैंने कहा मिलो तुम लोग, अब मिलो एनीवेज. और खैर हाँ, तो खैर हमारे पास उस्मान हफीज कह रहे कि ये हाँ वो कह रहे हैं कि आपका ना उस्मान से मानी, मानी इज सच अ क्यूट निक नेम, आई फील दैट मानी इज सो क्यूट. उस्मान का निक नेम मानी, या और उसके बाद उस्मी, उस्मी तो खैर जो भी प्यार से बुलाएगा तो वो नाम उसका सही है. और इसके अलावा जो है ना

आप लोगों के बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलबानो है मगर सब गुलरी कहते हैं प्यार से। समिया जी, अच्छी बात है, गुलबानो भी अच्छा नाम है। गुलबानो, गुल, गुलदस्ता, गुल के भी नाम अच्छे होते हैं। लाला रुख पता नहीं क्या है, लाला रुख का नाम मुझे इतना अच्छा लगता है, लाला रुख। ओके, और फरहाद मेमन कह रहे हैं क्योंकि मुझे मेरा असल नाम ही से बोलते हैं क्योंकि मेरा नाम ही बहुत प्यारा है मेरी शख्सियत की तरह, फरहाद। ये तो है, ये बात अच्छी है, शीनी फरहाद है ना, रोमांटिक नाम। ओके, और अब्दुल हसीब शरीफ कह रहे हैं मेरा नाम है जोजो। कहाँ आपका नाम अब्दुल हसीब शरीफ, मतलब दिल में मैंने आप कभी नहीं देखा, मैंने आपकी तस्वीर भी नहीं देखी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहतराम जाग जाता है जब मैं आपका नाम पढ़ती हूँ, अब्दुल हसीब शरीफ। और कहाँ आपका नाम जोजो, लेकिन खैर इट्स वेरी क्यूट। और राइट, और अभी मेरे पास जो है वो एक है स्पेशल डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन जो है एक बहुत ही स्पेशल बंदी के नाम पे, और वो डेडिकेशन है हमारी प्यारी दोस्त नौरीन के नाम, जो अब थोड़ी थोड़ी बदल गई है। काफी उम्मीदें थी मुझे कि तुम आओगी तो ये होगा वो होगा, लेकिन खैर हमारा प्यार तो वैसे का वैसे ही है। अब अगर आप बदल गई हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम आपकी सालगिरह भूल जाएंगे। तो हैप्पी बर्थडे नौरीन जी, एंड मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और अगला गाना जो है वो जुनी जमशेद का, मैं आपको डेडिकेट करी हूँ। ऑलराइट जी, और अगला गाना है जुनी जमशेद का, जिसमें वो अपने मेहमान, आने वाले मेहमान को बहुत प्यारे जो है वो नामों से पुकार रहे हैं, पहली धड़कन, रोशनी, और मतलब के सपने। प्यार होता है ना इंसान को, तो फिर उसके सारे नाम ही प्यारे, घटा, बारिश लगती हो, घटा लगती हो, नई गाड़ी लगती हो, ये भी एक ऐसे प्यार का कि तुम तो बिल्कुल ऐसी हो मेरे लिए जैसे लेटेस्ट मॉडल की फरारी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड, यू नो, प्यारा निकनेम। ऑलराइट, एंड तो हम सुनते हैं ये गाना खासतौर पे हमारे जे जे फैंस के लिए, अली रजा के लिए, जिनका असल निक ही जे जे है। अली रजा स्पेशली फॉर यू, एंड ऑल्सो शहरियार, और इसके अलावा और भी जो जे जे के फैंस, आई थिंक हम सारे लोग ही जे जे फैंस हैं। आइए सुनते हैं।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
7: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
8: ओ खैर है, बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
7: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
8: HBL जरिए बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
10: शराइत ज़वाबत लागू है.
11: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
12: FM 100.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
13: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs, कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा. जुमेरात 17 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर. हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया. ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा.
0: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
0: And
8: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
14: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
15: Tabal family mixture line, Umrah par jaye.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
16: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
17: Khawateen o hazrat, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
18: FM 24/7/365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
0: This program is brought to you by
3: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: facebook.com/fm247365 fm247365

0: your location for maximum music.
1: Emergency कभी बताकर नहीं आती.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉब

0: जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 0211118-2725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
7: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
9: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 6:11 AM. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking. Ke paas hai poultry farm, fish farm, sarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122. आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राबता कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
7: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
2: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
4: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं।
6: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: This program is brought to you by
5: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
3: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे।
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
5: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां? आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स।
6: प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा पीएमओस, कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा। जुमेरात 17 सितम्बर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
5: हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
8: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की सूखे से मुताबिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहम के लिए पूर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: This program was brought to you by
2: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
3: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
5: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
3: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
2: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं.
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
9: facebook.com/fm247365 fm 100
10: 31 saal fm 100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
11: Assalamu alaikum pakistan.

जी तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, और अब इस आगाज के बाद हम आपको सबसे पहले बताएंगे तरीका कार के कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ जो है वो आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी कॉमेंट कर आप लोग अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। भाई अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हुआ है, यानी कि बहुत सारी बातें और बहुत सारा म्यूजिक अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो इज जस्ट अ स्टार्ट, ये भी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, कल के दिन को भी डिस्कस करेंगे। वैसे कल हम आपके साथ मौजूद तो थे लेकिन कल रात में ना बिल्कुल अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि ऐसा ही हुआ कल रात में कराची में हुई बारिश। जी हाँ, ताजा तरीन खबर बहुत सारे लोगों ने इस बारिश को किया एक्सपीरियंस, जो कि कोई बहुत तेज तूफानी या बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं हुई, कुछ देर के लिए हुई, बल्कि कुछ मिनटों के लिए वो बारिश हुई, लेकिन उसने भी ना हम लोगों को बड़ा फ्रेश कर दिया, क्योंकि अब कराची वाले वो बारिश की खुशबू के लिए, वो मूसलाधार बारिश के लिए तरसे हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बस एक दो मिनट के लिए बारिश हुई कराची में, जिससे मुझे तो लगता है बाजार सब खुशी हो गए, क्योंकि कल इतनी ज्यादा वापस गर्मी हो गई थी, बहुत हब्स भी था, बहुत गर्मी थी, लेकिन वो कुछ मिनटों के लिए ना एटमॉस्फेयर बहुत हद तक चेंज हो गया था। तो कल कुछ मिनटों के बारिश होने के साथ साथ कराची में मॉनसून सीजन इख्तिताम पजीर हो गया। जी हाँ, पूरे चार महीने इंतजार करने के बाद सिर्फ दो मिनट की बारिश हमने एक्सपीरियंस करी है और उसके बाद साथ ही साथ ये मॉनसून स्पेल भी खत्म हो चुका है। अब ये अगले साल आएगा और उसी के साथ साथ दिसंबर या नवंबर में कोई होप शोप होगी तो होगी, यानी कि सर्दियों वाली बारिश अगर हो गई तो हो गई, वरना हमें इसका इंतजार 2027 में करना है, अनटिल एंड अनलेस वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट। चलिए जी, तो साथ ही साथ एक और ट्रैक की जाने भी चलते हैं। तो ये दो मिनट की बारिश आपने भी एक्सपीरियंस की तो हमें जरूर बताइएगा।

जी तो आ चुके हैं हम वापस एक बार फिर से और लुकमणि का भी मैसेज आ चुका है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मजे में हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आप कैसी हैं और आपकी जिंदगानी कैसी चल रही है? आई होप सो कि अच्छी चल रही होगी और मेरे बाकी तमाम लिसनर्स की जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी चल रही हो, ये एक दिली दुआ है। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, खुशो खुराम रखे, ये एक बेस्ट प्रे है सबके लिए और ये बड़ी जरूरी दुआ है सबके लिए। तो ये दुआ हम आपको देते हैं और ये कहते हैं कि जी आप खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ साथ आज कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इस पर भी हम नजर डालेंगे जरूर। लेकिन यार आजकल ना पता नहीं क्या हो गया कि एकदम से ना सारे अच्छे दिन जो बन रहे होते थे, मजा आता था जिन पे डिस्कस करना, वो सारे पता नहीं कहां चले गए। सितंबर में क्यों नहीं आ रहे हैं वो, बल्कि सितंबर में नहीं, काफी दिनों से मैं वेट कर रही हूं कि वो मजे वाले दिन जो आया करते थे जिन पर हम डिस्कशन किया करते थे वो नहीं आ रहे हैं। तो यार दिस इज सो सैड। तो मसला सारा ही है, तो ये चल रहा है। लेकिन जो जो दिन भी मनाए जा रहे हैं उसका भी बारे में हम आपको बताएंगे जरूर। यहां पर हमने पूछे हैं जी आपके भी हाल हवाल, कहती हैं जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूं, कल तो बस थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। अरे हाय आपकी जानिब से बूंदाबांदी हुई थी यार, ऐसा नहीं था यार, तेज बारिश हुई थी, बहुत ही कम टाइम के लिए हुई थी लेकिन हुई तेज थी और वो बस एक से दो मिनट के लिए मैक्स, आई थिंक एक से दो मिनट थे या एक से दो मिनट भी कराची के लिए बहुत है भाई। यहाँ पे तो डर ही लगा रहता है कि बारिश ना हो जाए, कहीं जो है वो सड़कें जो है वो मुतासर ना हो जाए। तो ये एक खौफ, एक फेयर हम लोगों के दिल में बैठा हुआ होता है, तो ये एक टेंशन हमें रहती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, हमने इतना वेट किया वहां, ये दो तीन मिनट की बारिश ने भी हमें ना काफी सेटिस्फाई कर दिया था। तो ये दो तीन मिनट की बारिश ने भी हमें मुतमईन कर दिया और हमने हंसी खुशी जो है वो इस बारिश को एक्सपीरियंस कर लिया। और मुझे सिर्फ सबसे ज्यादा अफसोस ना ये कल इस बारिश का ये रहा कि मुझे जाना था नीचे किसी काम से और मैं नहीं जा पाई और बारिश हो गई, तो मुझे इतना सदमा रहा। यकीन करें मैं काफी मिनटों तक एक ट्रामा में रही कि मैंने इस बारिश को एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जा रही थी और मैं अचानक से जाते जाते रुक गई जिस वजह से बारिश मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकी। तो लिटिल बिट सैड फॉर दैट। तो कल बारिश की सिर्फ खुशबू को एक्सपीरियंस किया लेकिन बारिश में नहाना नहीं हुआ, सो सैड। ऑल राइट जी, और हमारे पास एक और मैसेज भी आ गया है, कहते हैं आप भी पहली बारिश मुबारक हो। हाँ पहली बारिश, जी हाँ कराची वालों की पहली बारिश हुई है और पहली बारिश के साथ साथ ये इख्तिताम पजीर भी हो गई है जी, तो ये भी आपको बहुत मुबारक हो कि दिस सिस्टम हैज गॉन, सो नाउ होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि भाई पेट्रोल की कीमतें तो अब बिल्कुल आसमान पर जा चुकी हैं, ये भी बढ़ चुकी हैं, तो बहुत सारी चीजें भाई इस वक्त चल रही हैं, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन पहले आपके मूड को करते हैं और मजीद अच्छा एक ट्रैक के साथ और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

अल्लाह करे आ जाए तू। किसको बुला रहे हैं आप लोग? किसके आने का आपको है बड़ा इंतजार और आपकी दिली दुआ है कि अल्लाह करे आ जाए तू। कोई ऐसा है आपकी जिंदगानी में उसका आप बड़ी शिद्दत से इंतजार करेंगे जी ये आ जाए, बहुत वक्त हो गया कि वो आया नहीं। अच्छा वैसे ऐसा होता भी है ऐसी इसमें कोई वो बात नहीं है, बिकॉज समटाइम्स आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो आपके घर नहीं आते, आपकी खालाएं नहीं आती, आपके मामू नहीं आ रहे होते या कोई भी फूफो भी वो बहुत टाइम से नहीं आ रहे होते, तो आपको कहते हैं अल्लाह करे ये आ जाए। मतलब एक आपको याद आ रही होती है और आप चाह रहे होते हैं कि अब क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया इन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है तो ये लोग आ जाएं। और अक्सर औकात ऐसे रिश्तेदार जिनसे हमारी बहुत टाइम बाद मुलाकात होती है ना, तो इतना मजा आता है उनसे मिलके, हम एक फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन आजकल का जो एक शिकवा लोगों का वक्त नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, जो एक ये वाला टाइम फेस चल रहा है ना हम सबकी जिंदगियों का, कि हम हर चीज के पहले एक ये एक्सक्यूज जरूर दे देते हैं कि जी वक्त नहीं है। और वक्त क्यों नहीं है? वजह यह है कि जी वो ये टाइम ना इस चीज के लिए है, ये वो टाइम उस चीज के लिए। अच्छा लेकिन हम अपनी पसंद के भी सारे काम ना उन्हीं वक्त में कर रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि हम अपने मोबाइल के लिए पूरा वक्त निकालते हैं, और अक्सर औकात अगर ऐसा हो कभी कि आप अपने मोबाइल पर वक्त नहीं लगाते, यानी कि आपने अपना मोबाइल पूरा दिन नहीं देखा, तो आप बड़ी सैड हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार आज का तो मेरा दिन ही अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि मैंने मोबाइल नहीं देखा। और आप बड़ी हैरत से ये बात सबको बता रहे होते हैं कि जी मैं इतना मसरूफ रहा कि मैंने मोबाइल नहीं देखा, किसी से मुलाकात हुई या नहीं हुई इसका गम नहीं है, लेकिन मोबाइल नहीं देखा ना, ये जी बहुत बड़ी बात हो गई है। तो यार हम इस माशरे में रहते हैं जहां पे मोबाइल के ना इस्तेमाल करने पर हमें पूरा दिन का पछतावा रहता है कि मोबाइल ऐड इस्तेमाल नहीं हुआ है। भले किसी से मिले या ना मिले इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मोबाइल इस्तेमाल ना करने का गम है ना वो बड़ा गहरा है। तो क्या ऐसे गम आपकी जिंदगी में भी आते हैं जिसके बाद आप काफी दुखी हो जाते हैं? अगर आते हैं तो बताएगा हमें।

All right, so I'm back और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है. जी हाँ, क्योंकि अब बहुत सारी बातें हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर बात करें आजकल के नए ट्रेंड के हवाले से जो कि है 80s का ट्रेंड. जी हाँ, 80s की पैदाइश जो है भी या नहीं है लेकिन वो इस ट्रेंड को फॉलो जरूर कर रहे हैं. यानी कि 80s का गेटअप करके लोग अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देकर के, जी हाँ हम 80s में कैसे लगते हैं. और ये इस वक्त का सबसे ज्यादा वायरल तरीन जो है वो ट्रेंड है, क्योंकि ये वो ट्रेंड है जो कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने फॉलो ना किया हो. हर कोई इस ट्रेंड को एंजॉय कर रहा है, अपनी पिक्चर्स जो है वो 80s में डिजाइन कर रहा है और पोस्ट कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पर, हर जानब जो है भाई वो ये जो है वो जोशो खरोश जारी है लोगों का. तो आपने इस प्रॉम्प्ट को ट्राई किया है या अभी तक आपने सोचा है कि जी सोसाइटी का प्रेशर तो बड़ा आ रहा है, चलो जी हम भी ट्राई कर देखते हैं. बट पर्सनली ना मुझे ये वाला ट्रेंड बहुत मजे का लगा है. बहुत अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि सब बहुत अच्छे लग रहे हैं ये 80s के गेटअप में आके. और वाकई में अगर आप तब और अब के चीजों को कंपेयर करें तो वाकई में एक ह्यूज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है. और मुझे लग रहा है कि अब जब से ये ट्रेंड वायरल हुआ है ना, अब सबको थोड़ा थोड़ा वैसा सा गेटअप करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है. तो भाई इस वक्त का सबसे वायरल तरीन ट्रेंड है 80s वाला. और जो यानी कि 80s वाला प्रॉम्प्ट देकर जो सब अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो आपने भी इस प्रॉम्प्ट को ट्राई किया है या नहीं किया है हमें जरूर बताएं. और बात जब 80s की कर रहे हैं तो पुराने गानों की बात जरूर याद आती है. और पुराने गानों की भी भाई क्या ही बात है, ओल्ड इज गोल्ड. उन्हीं पुराने गानों को हम भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. वैसे पुराने गानों की भी ना एक तवील तरीन लिस्ट है, उसमें से कुछ चुनना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने खूबसूरत गाने हैं कि चंद आज चुनना भी ना आपको बड़ा मुश्किल लगता है. और आप सोच रहे होते हैं कि क्यों ना इसे भी शामिल किया जाए, क्यों ना उसे भी शामिल किया जाए. तो चलें जी ऐसे शामिल करते हैं जो कि सबका मोस्ट फेवरेट है और उसके बाद आते हैं वापस. तो आपने 80s वाले ट्रेंड को ट्राई किया तो हमें जरूर बताइएगा.

कोको कोरीना आप लोग इसे एंजॉय कर रहे थे और कोको कोरीना भी एक ऐसा ट्रैक है जो कि हर जनरेशन के इंसान ने एंजॉय किया है। शादी ब्याह की तकरीबात में हमने इसे जरूर सुना है या फिर इस पर जरूर ढोलकी में इस गाने को जरूर शामिल किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहा भाई 80s के ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करे जाने वाला जो ट्रेंडिंग चीज है वो है ये जी 80s का लुक, 80s में हम कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपने भी ट्राई किया है तो हमें जरूर बताएं कि आपको कैसे लगा, आप सेटिस्फाई हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोगों पर ना वो बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वो लोग, तो आई रियली लाइक इट। और मजा आता है जब ऐसी कोई ना कोई चीज जो है वो चल रही होती है। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ही हम ट्रेंड्स को, नई नई चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल हमारे लिए जो हर चीज है यानी कि हर चीज की मालूमात का जरिया है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि इसके बगैर आजकल हमारा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये फॉलो कर रहे होते हैं कि ये ट्रेंड आ रहा है, वो ट्रेंड आ रहा है, तो चलो जी ये करना जरूरी है। सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है, तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि आजकल सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है भाई लोगों पर कि ट्रेंड तो फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो भी करना है और पिक्चर पोस्ट भी करनी है ताकि सब लोग देख लें कि जी हाँ मैं भी ट्रेंडिंग हूँ और इस वक्त ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। क्योंकि मजे की बात यह है कि अगर आप किसी से ये कह दें कि अच्छा ये हो रहा है और मुझे नहीं पता, तो लोग आपको बड़ी हैरत से देखते हैं कि वाकई में तुम्हें इस बारे में नहीं पता, कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है वो ट्रेंड्स को बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं यार कि कहीं हम किसी से पीछे ना रह जाएं, तो ट्रेंड को फॉलो करना तो बनता है। जरी नूर भी कहती हैं सलाम, कैसी हैं, बहुत सारी दुआ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। आज वैसे हम बहुत सारी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ट्रेंड को भी मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी और भी मजीद आपसे बातें करते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बातें प्लस ट्रैक यानी कि मूड भी अच्छा रहे और ट्रैक्स भी रहे और ताजा तरीन सूरत हाल पर हम रोशनी भी डालें, तो बिल्कुल यही करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद और करते हैं आपसे मजीद बातें।

हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम बैक अगेन। बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है और मैंने सोचा कि चलो जी जरा लगे हाथों मौसम पर भी नजर डाल लेते हैं कि मौसम की ताज तरीन सूरत हाल हमें क्या आगाही फराहम करती है। तो फिलहाल तो मौसम की ताज तरीन सूरत हाल हमें ये बता रही है कि जी थोड़ी गर्मी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आज एक मजे की बात बताती हूँ कि आज जब गाड़ी चल रही थी ना, तब आपका वो बुरा हाल नहीं हो रहा था जो कि दो चार दिन पहले हो रहा था, यानी कि धूप भी आ रही है और वो गर्म हवा चल रही है तो आप सेटिस्फाई नहीं होते थे ना। आज बस ये सूरत हाल थी कि गाड़ी रुके नहीं, चलती रहे तो बुरा हाल नहीं है। सो इट मीन्स किस वक्त कराची का दर्जा हरारत तक काबिले एक्सेप्टेबल है 34 है, जबकि रियल फील्स लाइक इज 39 एंड दैट्स सो ग्रेट। यह है इस वक्त मौसम की ताज तरीन सूरत हाल, 34 है कराची का दर्जा हरारत, महसूस की जाने वाला है 39 और आसमान पर जो है वो कहीं कहीं बादल हैं लेकिन वैसे सूरज की ज्यादा हुक्मरानी है। और यह है ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त शहर कराची की। सो अल्लाह पाक रहम करे हम लोगों पर और बस अच्छी खबरें मिले मौसम के हवाले से भी और दीगर चीजों के हवाले से भी। लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लोग हैं जरा सैड और सैड होने के पीछे है बिल्कुल जायज वजह और वो जायज बात यह है कि पेट्रोल की कीमतों में हो चुका है इजाफा जो कि हम सबके लिए ना

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
0: and
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Us on facebook.com/fm247365 fm247365

हेलो माय फ्रेंड्स, सो आई एम बैक और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। और मैं आ चुकी हूँ वापस एक मजेदार सा लंच करके। जी हाँ, आई एम बैक और आज मैंने लंच थोड़ा अपना जल्दी कर लिया, तो मैंने कहा ठीक है जी, लंच के बाद हम आ गए हैं वापस और करते हैं आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और आज मैंने सोचा कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत होती है जी, एक अदर ट्रैक जो आपको हम डेडिकेट करते हैं, तो आज मैं सोच रही थी कि कौन सा ट्रैक डेडिकेट करें और इस सोच में मैं काफी देर से पड़ी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रैक को आज शामिल करते हैं जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद आता है और अक्सर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये कौन सा ट्रैक है, एंजॉय करें इसे।

ऑल राइट जी, सो वेलकम बैक. हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. और इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल चल रही है वो ये है कि जी आपके लंच में क्या है, इस वक्त क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, हमें जरूर बताएं. और हमारे लिसनर्स ने बताना शुरू कर दिया, भाई कोई बिरयानी खा रहा है, किसी के लंच में बैंगन है, किसी के लंच में दाल चावल है. और दाल चावल तो भाई फॉर एवर फेवरेट होते हैं आपके लंच में, क्योंकि एक अलग ही लेवल का मजा आता है दाल चावल खाने में. गर्म गर्म दाल हो, साथ में चावल हो, कोई सब्जी हो, तो ये मुझे बहुत एक अच्छा ऑप्शन लगता है. और सब्जी होनी चाहिए या फिर साथ ही साथ सिरके वाली प्याज हो, तो ये आपको बहुत फैंटेसाइज कर देती है, आपके लंच को मजीद मजेदार बना देती है. तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. और इसी के साथ साथ भाई आज हम फलों पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फल इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फल आपको हर जानेब और हर तरफ नजर आ रहे हैं वो हैं केले और सेब. जी हाँ, केले और सेब आपको अब हर दो कदम पर मिल रहे हैं. और इस वक्त केले और सेब के साथ साथ जो है वो पपाया भी आ गया है, वो भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन है नजर आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा रेयर रेयर ही समझे नजर आ रहा है, बहुत बड़ी तादाद में नहीं. लेकिन सेब और केले बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं. और इसके कितने फवायद हैं, क्या आप इस हवाले से कुछ आगाही जानते हैं या नहीं जानते, तो कोई फिक्र की बात नहीं है जी, हम आपको बताते हैं. लेकिन सबसे पहले आपका लंच जानते हैं, उसके बाद आपको सेब और केलों के फायदे बताते हैं. तो जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि आपके लंच में क्या है. हम आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

Yes everybody, so program lunch time special ka waqt hua jata hai khatam. सूजी हमेशा की तरह वी हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू. मजे मजे के लंचेस आप लोगों ने हमें बताया कि जी आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है. जरी नूर और आज मेरा लंच बिल्कुल सेम सेम है क्योंकि इन्होंने भी बिरयानी खाई है और आज मैंने भी बिरयानी खाई है. एंड यू नो व्हाट, आई ऑल्सो लव आलू की बिरयानी. इनकी तो चिकन आलू की बिरयानी थी बट आई हैड आलू इन दैट बिरयानी एंड इट वॉज सो गुड. तो आज मेरा भी लंच किसी के साथ जो है वो मैच हो गया है. वरना अक्सर औकात हमारे लिसनर्स का लंच कभी कभी सेम सेम हो जाता है, तो आज मेरा और मेरे लिसनर का लंच हो गया है बिल्कुल सेम. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का भी वक्त हो चुका है खत्म. तो होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम. तो रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और नाराजगी को करें खत्म, यानी कि करें टाटा बाय बाय. और इसी के साथ साथ कोशिश करें कि थोड़ी चहलकदमी भी जरूर करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और इसके बहुत सारे फवायद हैं. तो इसे भी अपनी जिंदगी में जरूर ऐड करें क्योंकि ये आपको बहुत सारे फायदे भी दे रही है. साथ ही साथ जो है इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, आपका मूड बेहतर होता है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ मैनेजमेंट में भी ये बहुत फायदेमंद होती है. तो अगर आप वॉक नहीं करते तो इसे भी लाइफ में जरूर ऐड करें क्योंकि इसके बहुत सारे फवायद हैं जो आपको बहुत काम आ सकते हैं आगे. तो इनसे आपने अपनी लाइफ में से करना है ऐड. और इसी के साथ साथ हमें देनी है इजाजत क्योंकि हम आपसे मिलेंगे कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम. सो अल्लाह हाफिज एवरी वन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो.

0: सो ये मतलब एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे वेट गेन के हवाले से मतलब जरूरी इसमें नहीं होता, क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. और हम अपने लिसनर्स को बताते चलें कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, विच इज ब्रॉट टू यू बाय एटको ग्रुप एंड पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. डॉक्टर उरूज लाल हमारे साथ मौजूद हैं एंड पीएमओस के हवाले से जो है आज हम अपने शो पर डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ही उठाऊंगी, बालों का बड़ा मसला होता है, सही, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बाल जो है वो पतले होना शुरू हो जाते हैं. वैसे ही नॉर्मली जो है अगर हम अब बात करें तो पानी के हवाले से भी जो है बाल लेकिन टूट रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक क्या मतलब सिम्टम आपको क्लियर होगा कि बाल अगर ये अब बाल अगर जो गिर रहे हैं वो इस हार्मोनल इशू की वजह से बहुत ज्यादा गिर रहे हैं.
1: अगेन आपके जो मेल हार्मोन है ना वो इस सारी चीज का मसले की वजह है.
0: तो
1: वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है ना सामने से. अब ये जो आदमियों के यहाँ यहाँ से अगर आप कभी गौर करें तो आदमियों के जो माथे पे बाल होते हैं ना वो इस तरह करके होते हैं, यानी यहाँ से यूं करके होते हैं नॉर्मली भी. हमारी पूरी पेशानी, ये पेशानी के बिल्कुल ऊपर पूरी एक सिंगल लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन होती है. तो इस तरह की जो रिसेशन होती है बाल पीछे जाना, सामने से बाल बहुत कम होना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही वो इस बीमारी में पीमोस में हाइपर एंड्रोजेनिज्म होती है, स्टीरो ये सॉरी
0: सही
1: मेल हार्मोन्स का ज्यादा होना होता है.
0: सही
1: तो
0: सही
1: ये उसकी वजह से होता है.
0: सही
1: और
0: सही.
1: वो यही है कि हम जब इसको ट्रीट करते हैं तो वो हार्मोन्स जब लेवल्स नीचे जाते हैं तो लेवल्स नीचे जाने से ये फिर बेहतर हो जाता है.
0: अच्छा अगर हम जेनेटिकली बात करें तो ये जरूरी होता है कि अगर हम अपने फैमिली हिस्ट्री में देखें, अगर किसी को जैसे अम्मी में ये मसला आया या हमारी किसी बहन में ये मसला आया तो ये जो है वो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफर होता है.
1: सो फैमिलीज में होता है, पेरेंट्स बहनों को है या खालाओं को है या मदर को है. सो फिर चांसेस आपके हो जाते आपके ज्यादा होते हैं पीमोस के.
0: सही सही ठीक है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हम करते हैं अबाउट ट्रीटमेंट. इसका इलाज क्या है, परमानेंट जो है लाइफ टाइम आपको मेडिकेशन पे आना पड़ता है, और क्या ऐसा लाइफस्टाइल आपको जो है वो मतलब अपने रूटीन में चेंजेस करनी पड़ती है, अपनी डाइट में चेंजेस करनी पड़ती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं.
1: सो अगर तो वेट गेन होता है तो वेट लॉस हम करवाने को कहते हैं, लेकिन वेट गेन नहीं है तो फिर डाइट को अच्छा करना है ना, मतलब उसके अंदर से अपनी च्वाइसेस को ठीक करना है. सो अच्छी हेल्दी डाइट को लेना है और डाइट को क्लीन करना है. सो उसमें जो जंक या जो भी आप ले रहे हैं ओकेजनली सही वो नहीं आपको हेल्प कर रहा ना, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है. तो वो चीज जरूरी है. उसके अलावा एक्सरसाइज, सो यू हैव टू बिल्ड योर बॉडी बेटर ऑन बेटर साइड ना.
0: बिल्कुल.
1: सो आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो एलिमेंट है जो अभी इतना ज्यादा नहीं है बट स्टिल देयर, सो वो आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो रेजिस्टेंस का एलिमेंट कम होगा. सो एक्सरसाइज होनी चाहिए विच शुड इंक्लूड द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, द एरोबिक एक्सरसाइजेस. बहुत नहीं, कुछ नहीं, बहुत जिम नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते. सो कम अज कम आधे घंटे की वॉक रोजाना जरूर कर लें. ये दो चीजें तो समझें आप, पीमोस क्या, आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं या आप छोड़ेंगे, सिर्फ ये हेल्दी लाइफस्टाइल.
0: सही सही
1: ये हर एक के लिए है, बीमार है नहीं है जो भी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है. वॉक जरूर होनी चाहिए, आधे घंटे की वॉक होनी चाहिए या कोई भी एक्सरसाइज आप करें. और दूसरा ये कि डाइट को सबको क्लीन करने की जरूरत है. तो हम लोगों की डाइट ठीक नहीं ना, हम असल में हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट ही खाना है. घर में कोई खुशी आएगी, कोई बात हो गया तो खाना खाने जाएंगे, कोई कुछ हो गया तो खाना खाने जाएंगे, कोई मेहमान आ गया उसको खाना खिलाने लेके जाएंगे, किसी के घर जाएंगे
0: तो खाना खाएंगे.
1: सो हमारे यहाँ तो एंटरटेनमेंट ही एक्चुअली यही है, लेकिन उसमें चॉइसेस आप कर सकते हैं ना कि हम अच्छा खाना खाने जाएंगे तो हम ये वाला खाएंगे जो कि हेल्दी है. आप चॉइस कर सकते हैं ना, और रोज रोज नहीं जाएंगे, रोज रोज नहीं करेंगे, ओकेजनली करेंगे. अब तो आसान बहुत हो गया ना चीजें मंगवा के खाना और
0: बिल्कुल
1: वो बड़ी चीजें हो गई. बट ये चीजें हमें करने की जरूरत है, दिस इज द मेन थिंग.
0: सही
1: फिर सिम्टम से और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है. पीरियड इरेगुलर है उसके अलग से ट्रीटमेंट होता है, अगर वो प्रेगनेंसी चाह रही है तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, अगर हेयर्स का मसला है तो फिर वो लेजर और उसके साथ मेडिसिन है वो अलग ट्रीटमेंट होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स के पेशेंट को क्या चाहिए, लाइफ लॉन्ग है या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्टाइल. सो अगर यू विल वी हैव सीन कि जिन्होंने अपना लाइफ स्टाइल बेहतर किया है, दे आर ऑफ द ट्रीटमेंट और वो बहुत उसके साथ और उन्होंने मेंटेन रखा है उस लाइफ स्टाइल को, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी.
0: सही.
1: लेकिन जो लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन कर पाते फिर उनको ये लॉन्ग टर्म लेना पड़ जाता है, उसकी ट्रीटमेंट चलती है फिर लॉन्ग टर्म.
0: सही मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल के आप जो है अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, वॉक कितनी कर रहे हैं. और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी नहीं है आप इसको प्रॉपर जिम वगैरह करें, लेकिन वॉक तो नॉर्मली भी जरूरी होती है. भले अगर आप बिल्कुल हेल्दी भी हैं, आपको किसी किस्म का कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है या हार्मोनल इशू नहीं है, तो स्टिल इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वैसे ही जरूरी होता है. हमारे असल में होता ही है डॉक्टर साहब, जब हम बीमार होते ना तो फिर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाते हैं. जब तक हमारे ऊपर वो चीज पड़ती नहीं है ना, तो हम कहते हैं चलो जैसा है चलने दो चल रही है बस.
1: ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड कि देखिए स्ट्रेसेस बहुत हैं, आप बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक है, आप घर पहुंचते हैं, यू वांट टू रेस्ट. इट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल. आप रेस्ट जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा आप खिलना जुलना भी करें घर जाके, मतलब वो टीवी के सामने या वो
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बजाय आप खिलना. अच्छा, एक और चीज, घर के काम. सो खवातीन कहती है मैं सारे घर के काम करती हूँ, लेकिन घर के काम जो होते हैं ना, वो उसमें वो बात नहीं होती है जो आपकी ब्रिस्क वॉक में होती है. आप घर के काम करती है ना, आपका सांस तो नहीं फूलेगा ना, आप थोड़ा सा इधर किया फिर उधर चली गई फिर उधर चली गई, लेकिन वो ब्रिस्क और आहिस्ता आहिस्ता हम कोई ब्रिस्क वॉक तो नहीं कर रहे होते. सो जो हमें चाहिए, जो एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको फायदा देती है, वो ब्रिस्क वॉक वाली है, कि जाके आपका थोड़ा सा जैसे सांस फूले और आप जुमला पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इतनी तेजी से, और उसको जब आप करेंगे ना तो आपको ज्यादा फ्रेशनेस फील होगी, आप खुद फ्रेश भी फील करेंगे. इट हैज वेरी गुड एंडोर्फिन्स. सो ये करने की बहुत जरूरत है.
0: सही. और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि पीएमओस की वजह से जो है हमारी जहनी सेहत पे क्या असरात पड़ते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी स्टार्ट हो जाता है, तो ये किस हद तक बढ़ जाती है चीज, मूड स्विंग्स होते हैं.
1: बिल्कुल होता है ना, वो असल में देखें आपका एक बॉडी इमेज भी तो होता है ना, तो आप उसकी परेशानी होती है. अगर किसी को एक्नी है तो लड़की वो परेशान तो होगी, जाहिर है, उसके चेहरे पे बाल आ रहे हैं तो वो परेशान तो होगी. सो इट हैज अ वेरी स्ट्रांग, इसका बड़ा स्ट्रांग साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और उसको ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन वही बात है कि आके बात वही खत्म होती है कि लाइफस्टाइल, अगर वो लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगी तो ये चीजें भी इंप्रूव होंगी, और जब ये इंप्रूव होंगी तो बॉडी इमेज इंप्रूव होगा, डिप्रेशन भी इंप्रूव होगा.
0: सही.
1: लेकिन इट इज वेरी मच लिंक्ड बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स, ये बहुत डिप्रेशन एंग्जाइटी इसके साथ बिल्कुल लिंक्ड है.
0: सही. अच्छा, जो छोटी उम्र की, जो छोटी एज की लड़कियां होती हैं, उनमें पीएमओस डेवलप होने के कितने चांसेस होते हैं, और उन सिम्टम्स को कैसे डिटेक्ट, उनकी सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं?
1: सो सिम्टम्स तो देखें वही है. अब वही बात मैंने बीच में बोला था, एडोलेसेंस का जो टाइम है ना, जैसे 14 साल से, अब थोड़ा सा और हम नीचे चल गए 11 साल की बच्चियों में भी.
0: सही.
1: जो सिलसिला शुरू होता है महावारी का और वो बड़ी होना शुरू होती है, उसमें जो पहला साल होता है ना, उसको तो हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उसमें, क्योंकि आए ना आए, क्योंकि सिस्टम ने सेट होना होता.
0: सही.
1: पहले 1 से 3 साल हम इतनी इम्पोर्टेंस, हाँ, लेकिन उस दौरान अगर बहुत बाल होने लग गए चेहरे के ऊपर, थिक बाल होने लग गए, एक्नी बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गई, होती है बच्चों को, लड़कियों को एक्नी स्टार्ट होती है उस वक्त, लेकिन बहुत एक्सेसिव हो गई, जैसे मुंह भरना शुरू हो गया उससे.
0: सही.
1: और जो है वेट गेन होना शुरू हो गया, और जो है आपका क्या कहते हैं एकेंथोसिस, यानी कि ये गर्दन काली होना शुरू हो गई. ठीक है. और पीरियड्स, अगेन पीरियड्स पे आते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर इस तरह से हुए कि 90 दिन तक पीरियड नहीं आया. अच्छा, साइकिल जो है 35, हमने उस वक्त 21 की बात की थी, इनमें हम साइकिल का 35 दिन का हिसाब रखते हैं कि उससे आगे पीछे हो रहा है. तो और 3 महीने के लिए बिल्कुल नहीं आया पीरियड, और फिर आया और फिर नहीं आया. सो फिर हम इसको इवेलुएट करते हैं, अगर इसके साथ बाल और एक्नी आ रही है तो.
0: सही.
1: लेकिन सिर्फ अगर पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो उसको हम कुछ अर्से के लिए वेट कर सकते हैं.
0: सही.
1: सी कि ये सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है, इसको सेट होने में टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट. अगर 3 साल हो गए और इसी तरह से चल रहा है तो फिर इसको इवेलुएट किया जाता है.
0: सही. अच्छा, और अगर हम इस हवाले से बात करें कि जैसे पीएमओस के हवाले से कुछ ऐसी मिथ्स हैं या कुछ इस तरीके की फॉल्स फैक्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ.
1: पीएमओस के साथ एक है कि فرٹیلیٹی کا کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ بچے نہیں ہو سکتے. سو بالکل ہوتے ہیں, فرٹیلیٹی بالکل ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہے بالکل ہم نے تو وہ بھی دیکھے ہیں جو فرٹائل زیادہ ہوتے ہیں, ایسے بیماری دیکھے ہیں. سو یہ چیز کہ بھائی بچے نہیں ہوں گے یا کچھ اس طرح کی چیز, تو یہ بالکل متھ ہے. آپ اس کو ٹریٹ کرائیں گے تو یہ بالکل وہ ہوگا. صرف موٹے لوگوں کو پی ماس ہوتا ہے, سو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف موٹی لڑکیوں کو پی ماس نہیں ہوتا, پتلی لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے. ان کو ٹریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کا پی ماس بیٹر ہو جاتا ہے. جو موٹی ہوتی ہیں, جو موٹی نہیں ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی یا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کا ایلیمنٹ وہ ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ وہاں پہ نہیں ہے. مگر موٹاپا از ناٹ دا ریزن. ہر اووری جس کے اندر سسٹس ہیں وہ پولی سسٹک نہیں ہوتی.
0: صحیح ہے,
1: ٹھیک ہے. ہر اووری جو سسٹ ہے اس کو پولی سسٹک بنا دیا جاتا ہے. ہر ایریگولر پیریڈ پولی سسٹک یا پی ماس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایریگولر پیریڈ کی بہت ساری اور وجوہات ہیں. تھائرائڈ ہو سکتا ہے, پرولیکٹن ایک اور ہارمون ہے وہ ہو سکتا ہے, بہت ساری انیمیا خون کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہ آ رہے ہوں پیریڈس. جب انیمیا ہوگا تو ہماری قدرتی طور پہ ہمارا نظام ہے باڈی کا کہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں. سو اگر ایج بھی کسی کو انیمیا ایسا ہے کہ اس کا ایج بھی 3-4 ہے تو اس کو پیریڈ نہیں آئے گا, اس لیے کہ خون ہی نہیں ہے نا. تو وہ خون اگر اس کا بہے گا تو اس کی تو لائف کو ڈینجر ہے نا.
0: بالکل بالکل.
1: سو انیمیا از ون آف دا کازز کہ پیریڈ نہیں آئے گا. سو ہر ایریگولر پیریڈ یا ایبسنٹ پیریڈ جو ہے نا وہ پی ماس نہیں ہے. اس کو ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈوکرینولوجسٹ جائیں, اس کو دکھائیں اور وہ اپنا پورا ورک اپ کرے اور اس کے بعد ڈیسائڈ ہوگا کہ پی ماس ہے یا.
0: صحیح. اچھا, ہائی کورٹیزول کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے, آپ کو فٹیگ فیل ہو رہا ہے, تو اس کو بھی ہم اس چیز میں نہیں سمجھ سکتے کہ پی ایم اس کا مسئلہ ہے یا کچھ ایسا.
1: اچھا دیکھیں, ہائی کورٹیزول بہت مختلف چیز ہے.
0: صحیح,
1: ٹھیک ہے. وہ الگ سے ایک بیماری. ایک نارملی ہائی جو رہتا ہے وہ تو اسٹریس لیول
0: سے. صحیح.
1: تو وہ تو الگ چیز ہے, وہ اسٹریس کا الگ وہ ہے.
0: صحیح.
1: ایک اور ہوتا ہے جس میں بہت ہائی کورٹیزول ہوتے ہیں, اس میں تھن اسکن ہوتی ہے, اس پہ ریش ہوتا ہے, وہ الگ سے ایک بیماری ہے.
0: صحیح,
1: ٹھیک ہے. اور اس کا علاج اور سب کچھ الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ بالکل الگ سے. اس کو ہم کشک ڈیزیز کہتے ہیں. ہائی اسٹریس لیولس کے ساتھ پی ماس, ٹھیک ہے, اسٹریس لیول کے ساتھ آپ کے پیریڈ ارریگولر ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ ظاہر ڈسٹرب ہے تو وہ ہارمونل ڈسٹربنس کرے گا. مگر اس کو پی ماس لیبل کرنے کے لیے ہمیں صرف اسٹریس نہیں, ہمیں تو کرائیٹیریا فلفل کرنا ہے. چیزیں ہیں یا نہیں ہیں وہ دیکھیں گے. ہاں یہ کہ کچھ لوگ اسٹریس میں بنج ایٹ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور کیونکہ ایک وہی کمفرٹ ہوتا ہے ان کا.
0: بالکل.
1: سو دے ایٹ. اب وہ جو کھا رہے ہیں وہ کمفرٹ فوڈ کون سا فوڈ ہے اگر وہ ان کے
0: جنک ہے یا ہیلدی ہے.
1: سو اگر وہ انسولین ریزسٹنس کی طرف لے کے جا رہا ہے,
0: صحیح,
1: پھر آپ
0: صحیح
1: پی ماس کی ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے.
0: صحیح صحیح صحیح. اچھا, اگر ہم ایک اور سوال بڑا اہم ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, جیسے پریگنینسی میں یہ ایشوز ہو سکتے ہیں اگر ہارمونل چینجز, مطلب ہارمونز اتنے امبیلنس ہو جاتے ہیں کہ یہ پی ایم اوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا یہ اس سے پہلے ہوتا ہے یا اس کے بعد ہوتا ہے, پوسٹ پارٹم سیریز میں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟
1: اچھا دیکھیں, پریگنینسی تو از اندر اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اس کے اندر تو سارے ہارمونز جو ہوتے ہیں نا, جو یہ اووری کو ہارمونز ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے انڈے بنانا اور پھر انڈا ریلیز کرنا, پیئر کرنا تاکہ پریگنینسی ہو جائے. جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر ان ہارمونس کی ضرورت نہیں ہوتی, تو باڈی ان سارے ہارمونس کو سلا دیتی ہے.
0: صحیح.
1: سو اووریز کو بھی سلا دیتی ہے تاکہ وہ انڈے نہ بنائے. اب اس ٹائم پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب پریگنینسی ختم ہوتی ہے, ڈلیور کرتی ہیں, اس کے بعد اٹ اگین, جب جو ہی وہ سسٹم اسٹارٹ ہوتا ہے, ری اسٹارٹ ہوتا ہے, سو اس ہر دفعہ ہر پریگنینسی کے بعد وہ سسٹم جب ری اسٹارٹ ہوگا, وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے ری اسٹارٹ ہوگا. بہت سارے لوگوں کے سائیکلز بڑے ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں پریگنینسی, ہر پریگنینسی کے بعد ان کے سائیکلز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. سو اگر پی ماس ہے تو پریگنینسی ڈلیور ہو گئی, تو اس کے بعد اگر لائف اسٹائل ٹھیک نہیں رکھا اور وہ ویٹ جو گین کیا تھا اس کو کم نہیں کیا, تو پھر یہ دوبارہ سے شو کرے گی.
0: شو کرے
1: اور نہیں تھی پی ماس تو ہو بھی جائے گا, کیونکہ آپ نے ویٹ گین کیا نا پریگنینسی کے دوران, اس پریگنینسی کو شیڈ نہیں کیا, اس ویٹ کو شیڈ نہیں کیا, ختم نہیں کیا, کم نہیں کر سکے آپ, تو پھر یہ ایلیمنٹ یہ اسٹارٹ ہوگا.
0: सही सही। और अगर पीएमओ को नहीं कंट्रोल किया जाए तो क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं? क्योंकि आई गेस बहुत से लोग उसको, जैसे लड़कियां जो है इतना नहीं गौर करती, कहती ठीक है चलो पीरियड सिर्फ रेगुलर हो गए सही हो जाएगा, बीच में हार्मोनल इशू हो गया, तो अगर इसको नहीं कंट्रोल किया जाता तो क्या ऐसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, थोड़ा सा बताएगा?
1: सो एक तो डायबिटीज है,
0: सही
1: ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंसेज है, डिसलिपिडीमियाज, तो वो डिसलिपिडीमियाज अगर हैं तो हार्ट के इवेंट्स होने का खतरा हो जाता है ना, क्योंकि जो शरियाने हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो छोटी हो जाएंगी उनके हार्ट के इवेंट्स, तो ये चीज है,
0: सही
1: ये हो गया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, देखें जो जो बच्चादानी होती है उसकी एक लेयर होती है, ठीक है, और हर पीरियड में वो लेयर निकलती है खून की सूरत में,
0: सही।
1: सो अब अगर अगर आप को पीरियड नहीं आ रहा तो वो क्या हो रहा है, वो बच्चा रानी की जो वो लेयर है वो बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, हार्मोन आपका ईस्ट्रोजन इतना ज्यादा है वो बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, वो शेड नहीं कर रहा। जब वो शेड नहीं कर रहा तो वो अंदर उसका हाइपरप्लेजिया और उसकी मलिग्नेंसी होने का खतरा होता है, यानी उसका एंडोमेट्रियल का कैंसर होने का खतरा होता है,
0: सही।
1: इसलिए जरूरी होता है कि एटलीस्ट साल में 3 दफा जो लड़की है ना वो पीरियड जरूर आए,
0: सही।
1: अगर उसको बेबीज और उसका नहीं है पीरियड्स, ओवुलेशन, एग रिलीज होना और प्रेगनेंसी का और उससे साथ बहुत इसका ताल्लुक है, लेकिन अगर उसको जरूरत नहीं है तो हम साल में 3 दफा उसको जरूर ब्लीड कराते हैं, क्योंकि वो जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है ना उसका निकलना बहुत जरूरी है, वो रहेगी तो वो खतरनाक।

0: विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takki.
1: And
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: It's the soundtrack of your life. It's FM 100.
5: Some are born to lead. Welcome to FM 100.

Hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Thursday, and 17th of September, 2026. आप सुन रहे हैं हमारा शो. आप लोगों बताते चलें. आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं 3636 पर रिक्वेस्ट पे शो. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट रखिए चाय. Then leave space, आपका मैसेज, आपका नाम और आपकी रिक्वेस्ट 3636 पर भेजना है. ऑल्सो आप facebook.com/orchid.jasmine इस पर भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट रैक. मिलते हैं इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा.

Alrighty, everyone, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर and तरीके कार बहुत ही आसान है. Just type K शायद and leave space. आपका message, आपका नाम, आपकी request और इसे 3636 पर भेजना है. So जनाब, आप लोगों को बताते चलें कि आप लोग बिल्कुल हमें messages कर सकते हैं 3636 पर.

Alrighty, everyone. Welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and it's 53 minutes past you on the dial right now. 4 बजे तक आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं. Okay, हमारे पास मैसेज आया असलम का. Please play the song रफ्ता रफ्ता by आतिफ असलम. Program is nice. Thank you so much for your message. जरूर play कर देंगे आपके लिए. बहुत शुक्रिया. Okay, आप लोगों को बताते चलें, Instagram पे भी आप follow कर सकते हैं by the name of jasmine_ahmed and facebook.com/rj.jasmine. पे भी आप कोई टॉपिक अगर सजेस्ट करना चाहते हैं या अगर आप कोई ट्रैक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. द ट्रैक इज आंखों के सागर. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: Alrighty everyone, welcome back. हमारे पास हशाम का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम हशाम, बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका शो अच्छा है, आवाज भी अच्छी है. प्लीज प्ले द सॉन्ग काली काली जुल्फो, डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड से. ओके, जरूर कर देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. अस्मा हैज टेक्स्टेड, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं. मान सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया, ठीक हो गया अस्मा, जरूर प्ले कर देते हैं आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. अभी हम जा रहे हैं एक ट्रैक की तरफ, विच इज द ओएसटी ऑफ दर निजात. मिलते हैं इसके बाद, हमारे साथ रहेगा.
1: Genie in radio.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Alrighty, everyone. Welcome back up to Sunrise from 100 Pakistan. And it's 48 minutes past 3 on the dial right now. तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं शो को खत्म होने में. जल्दी जल्दी अगर आप चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं. निदा ने मैसेज किया है और सुरूर सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है. ठीक हो गया, जरूर प्ले कर देंगे. Aisha has texted in and requested for the song called Dheere Dheere by Sara Raza. Theek hai, hum play kar denge. Thank you so much for your message. Right now, we are moving on towards another track, jo Sami Sheikh ki request hai. Funkari by Aima Beg. This track is for you.

Okay, so now welcome back. So it's 53 minutes past 3 on the dial right now, which means that Shoga time jo hai wo khatam hai. Thank you so much for all the text senders out there, jisne hame messages kiye, jitne logon ne, aur show sunne ke liye bahut shukriya. Inshallah, aapse next week mulaqat karenge. Same time, same channel, same place. आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए. अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, इनबॉक्स कर दें, और जिसका टॉपिक अच्छा लगेगा हम उसी के नाम से जो है वो शो पे जो है टॉपिक कंडक्ट करेंगे. सो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. facebook.com/rj.jasmine And you can also follow me on Instagram by the name of Jasmine_Ahmed, JZMINE_AHMED.

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
2: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
4: Like us on Facebook.com/FM

0: your location for maximum music.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
8: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
9: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837.
11: वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
12: This program is brought to you by
13: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
12: And
14: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
12: And
9: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
12: And
15: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
12: And
3: HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.
12: And
11: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
16: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
17: FM 247365.
18: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
19: Only music, no RJ talk.
18: This is FM 100.
20: Come on.

0: your location for maximum music.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
4: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
7: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
1: This program is brought to you by
8: Sir Sabs Nitro Falls ko laga aur jeet ta ja
1: and
9: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
10: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
11: Tabal family mixture laye umrah par jaye
1: and
2: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
1: and
12: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally.
13: facebook.com/fm247365
14: FM247365

0: sa HBL Freedom Account.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जहां पांच दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: अपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
6: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
6: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
9: वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
10: This program is brought to you by
11: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
10: and
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
10: and
13: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
10: and
14: Tabal family mixture laye, umrah par jaye
10: and
0: HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL
10: and
9: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
15: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM 247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
17: Assalamu alaikum, Pakistan.
18: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
19: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein Azan e Maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: we are tele health par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
3: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And
4: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
0: And
5: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
11: शराइत ज़वाबित लागू है.
12: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
13: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
14: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
16: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
3: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उम्र लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं.
17: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
5: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
0: This program is brought to you by
10: HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
0: facebook.com/fm247365
18: FM 247 365.
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
18: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
19: Club mixes.

very good evening to you, Mr. Arman. What about Daddy Cool? इस गर्मी में यही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता. Kid, it's so hot, yeah, seriously. Where is the barish? Arman, जरा check करें. कहीं किसी नुक्कर पे मिल जाए आपको बारिश. थोड़ा सा इधर भिजवा दें.

कैसे हैं? बारिश इज ऑन द वे, आगे जरा चेक तो करें कहीं खुदाई वुदाई नहीं हुई, वहीं पे बारिश रह जाएगी. एवरी नुक्कड़ ऑफ कराची हैज सम खुदाई डन, वहीं पे बारिश रुक गई. No, I try my best, you know, to give you the best and of course raise the energy out there. I don't need barish, I need music. What do you say, Armand?

0: पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: Tapal family mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 02131118275 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code bataein aur lucky draw mein shamil ho jaein. Tapal family mixture laein, umrah par jaein.
2: Kamiti chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai, to kisi ka kal bhejta hu wala excuse aur kisi ko reminder par reminder chahiye. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
3: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
5: नशा हमें परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने, लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
8: FM 100 evening drive, cruising on the FM dial.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
7: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
11: शराइत ज़वाबत लागू है.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
10: HBL Zari Banking ke paas hai poultry farm, fish farm, zari alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
12: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
13: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
14: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं.
13: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
15: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ.
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
16: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
16: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए.
13: आइए वेट से आगे का सोचें.
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
17: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
18: FM 100 Evening Drive, cruising on the FM dial.

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: This program is brought to you by SBI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरे यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM

0: Your location for maximum music.
1: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: This program was brought to you by
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
4: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: स्वागत आनंद कराची की तकनीक।
6: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाजुन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: FM 100 like us on Facebook.com/FM 24/7 365 FM 24/7 365.
14: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
16: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.

0: Hello, my check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Sabhi sunne walon ko ayaz ahmed ki janib se adab. Kya hal hai, kaise mizaj sharif hai? Umeed karta hoon maze mein honge, theek thaak honge. Sun rahe apna favorite radio channel FM 100 aur janab 9:05 ho gaye. Drive kar rahe hain itminan sukoon, ghar mein baithe hain to bhi. जनाब दिन है आज थर्सडे और थर्सडे वाले दिन जरा मिक्स ट्रैक्स होते हैं, नए पुराने रिमिक्सेस, इंग्लिश अरबिक सारे. तो कोशिश यही है आज भी जरा क्यू शीट जो है जरा डिफरेंट हो, हटके हो. अच्छा ये बात है कि ये जो क्यू शीट पे हम मेहनत करते हैं, यानी गाने जो हम सिलेक्ट करते हैं, इसकी अप्रिसिएशन मुझे जिस तरीके से आप लोग देते हैं का बहुत शुक्रिया. बहुत सारे दोस्त मुझे जो है फेसबुक पर और इधर उधर भी मैसेजेस के थ्रू ये पूछते रहते हैं, सर जी गाने कहां से लाते? सर बस आ जाते हैं, आप बस एंजॉय क्या करें. आप एफएम 100 9 टू 11 खास तौर पे मेरा शो आपने लगा लेना और आपको नए नए गाने भी और पुराने भी सारे सुनने को मिलेंगे. ये मत पूछो कि कहां से आए, सोर्स जो है वो कोई नहीं बताता अपना. ठीक है जनाब. और इसके अलावा जनाब मैसेज का तरीका मैं आपको बता दूं, वैसे तो पता ही होगा कि चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर. अपनी पसंद की बातें लिखे, अच्छी बातें लिखे कि ऑन एयर में पढ़ सकूं. वह जनाब आगाज करेंगे इस खूबसूरत से ट्रैक से और इसमें जॉन एलिया साहब की भी आवाज सुनाई देगी आपको.
1: बात भी तेरे जाने जान दिल में रहा अजब सा, बाद भी तेरे जाने जा दिल में रहा जब समा, याद रही तेरी यहां फिर तेरी याद नहीं.

0: बात है जना, जबरदस्त ये ट्रैक, फैज साहब की खूबसूरत आवाज। ओरिजिनली तो ये गुलाम अब्बास साहब ने गाया, लेकिन कवाली के स्टाइल में फैज साहब ने ये गाया। बहुत जबरदस्त कवाल है ये भी, और साथ में आवाज जॉन एलिया साहब की।
1: कोई शरार जिंदगी से अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, कोई शरार जिंदगी से उसके गम ने किया सभी को मार, कोई शिकवा
0: नहीं। जनाब कवाली तो बहुत तवील है, तो बस इतनी काफी है। तो कवाली वाला सीन ऑन है, तो एक और इसी स्टाइल का मैं ट्रैक आपको सुनाता हूँ।

All right, Jana, welcome back. Sun rahe FM 100 aur saath hi saath messages bhi 3636 par. Salam, kaise hain? Bahut duaen aapke liye aur sabko salam. Zarinur, wa alaikum salam. Aur janab, iske alawa Mrs. Farooq aa gayi hain. Assalamu alaikum keh rahi hain. Wa alaikum salam. Dheero duaen aap deti hain. Bahut shukriya, bahut shukriya. To bhai, ye puri ek family ban gayi hai. Bhai, aur log bhi aaye yaar. Mazid naam bhi hame sunne ko mile. Pata chale bhai aur kaun kaun se log jo hain wo shamil ho rahe hain. उम्मा सिद्दीकी कह रही है कि इस्लाम अयाज वालेकुम सलाम, क्या धमाकेदार एंट्री की है सॉन्ग की, बस आपको पसंद आ रहे तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। और कह रही ना गैस ना बिजली ना पानी, आपका शो सुनकर मेरे दिल का गम भुला देती हूँ। हाय हाय, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देती हूँ। ये बिजली पानी गैस तो वाकई यार, और अब तो मैं पेट्रोल की जो कीमतें मैं देख रहा हूँ यार, अल्लाह ही अल्लाह। ये दिन ब दिन जो है ना ये थोड़ा सा जरा परेशान कर रही है। इसी बात पे एक बड़ा खूबसूरत सा मुझे ट्रैक याद आया और इसकी भी शायरी कमाल। और संजीदा जी आ गई हैं भाई। संजीदा वालेकुम सलाम, हमेशा की तरह वार्म वेलकम जिसको कहते हैं ना, वो इन्होंने किया है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी पूछ रही है कहां से ये फोल्डर जो है वो मिलता है गानों का, बस मिल जाता है। और आप लोगों से मैं यही कहता हूं कि बस मुझसे पूछा ना करें। चले जनाब, एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक।

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और वाकई यार शायरी कमाल है इसकी और बहुत ही हटके मजबूत की। चले जनाब संजीदा जी को बहुत पसंद आ गया, संजीदा जी थैंक यू, बल्कि मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, यूके से नादिया मलिक हमें सुन रही हैं। नादिया जी रोड पर गाड़ी में आराम से सुन रही हैं, क्या कहने, सबको सलाम भी कह दिया, वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। कहां घूम रही हो ए दसो सानू, क्या बात है जनाब। संजीदा जी ने क्या लिख दिया भाई, कहते हैं लिखते लिखते थक जाऊंगी मगर तारीफ का हक अदा नहीं होगा। भाई क्या बात, क्या बात, बस आप लोगों की प्यार, आप लोगों का मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई अब नेक्स्ट ट्रैक की जानी बढ़ते हैं और शहजाद मुगल याद आ गए मुझे, बस यूं ही ये गाना उनका, वो भी बहुत हिट था, पैदल चलते हुए जा रहे थे वो पुल के ऊपर। उसके बाद एक और ट्रैक आ गया, वो भी बहुत हिट, भूले ना कभी, यकीनन आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन जरा सा ये आज वही गाना, लेकिन जरा नए स्टाइल से, और वो है कैसे,

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100, where the vibes are proud.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
3: 100 FM
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: स्वागत खानम कराची की तकलीफ
7: Us on facebook.com/FM247365 FM247365
8: Active
9: Yummy
8: Jordan Seven I've got a
9: crush on you Give me a to suno yaad
8: I've got a crush on you
10: जनाब वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और अदीला बहन हमें मैसेज करी है सलाम मेरे प्यारे भाई अयास कैसे हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी ठीक है और कह रही है प्ले लिस्ट बहुत ही चक दे फटे अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे संजीदा आप ही को सलाम और एक सॉन्ग ठीक हो गया जनाब और नादिया मलिक जनाब यूके से यानी अपने ऑफिस में काम करके अब वापस जा रही बड़ी जबरदस्त है ये जो टाइम है ना बेस्ट है ये ड्राइव टाइम इनका हो गया यानी कि जैसे यहां होता ना 5 बजे शाम को तकरीबन ऐसे ही इनका भी ये टाइम है यूके में तो जो यूके में सुन रहे हैं उनके लिए तो ये ड्राइव टाइम होगा क्या कहने तो जब सफर हो रहा है तो ये वाला ट्रैक नादिया मलिक मैं आपको डेडिकेट कर देता हूं और वो है कैसे

0: क्या बात है, क्या बात है, कह रही है नादिया मलिक जी ट्रैफिक इतनी है क्या? सफर आहिस्ता आहिस्ता ही कट रहा है, तेजी वैसे भी सेहत के लिए सही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान सुकून के साथ
1: चले तो कट ही जाएगा सफर।
0: अच्छा जनाब सलाम आयास सिक्वेंसर बैंड का यादें बीते दिनों की सुना दे। अफशीन रिक्वेस्ट शो तो नहीं है लेकिन चले मैं कोशिश करूं। गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। और जनाब संजीदा क्या कह रही है, ये भी गाना पसंद करिए, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इस ट्रैक को भी शामिल करते हैं। यार पुराने वक्तों में बोनिया में एक बैंड हुआ करता था गयासुद्दीन बलबन का फेवरेट, लेकिन जरा नए स्टाइल में इस ट्रैक को जरा मैं आपको सुनाता हूं। हाय हाय गाड़ी में है तो इत्मीनान सुकून से सुने आप।

ट्रैक जब भी सुने ऐसे एंजॉय करते हैं हम। अच्छा जनाब, रमजान पठान कह रहे हैं आज भाई आपको और तमाम लिसनर्स को सलाम, बिलावल भाई हॉस्पिटलाइज है, उनके लिए दुआ करें। क्या हो गया, क्या खा लिया, मोशन तो नहीं लग गए? इसमें भी अक्सर लोग जो है ना हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इतनी कमजोरी हो जाती है। तो बहर अल्लाह आपको खैर दे भाई, अब बिलावल भाई जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा जब जब अंग्रेजी टच हुआ तो जरा वलैती टच भी ले आता फौरन साथ ही साथ, चेक करें जरा।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट DSL रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस फाल करने के लिए DSL कोड्स डायल करें. जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए.
6: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखिए, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी ज़हमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफातशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफातशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
0: facebook.com/fm247365 fm247365
7: 947-365.
8: Active.
9: Yummy.
8: Adorable. Zabardast.
9: Say I've got a crush on you. Kya pyaar to suno yaar.

जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं। उमा सिद्दीकी कह रही है कि भाई बोनियम जबरदस्त और अपनी पसंद का हार्ट टचिंग सॉन्ग इंग्लिश का वो भी प्ले करें। अच्छा मैं कर दूंगा उमा जी। सलाम प्यारे चांद जैसे भाई अयाज, गाने उम्दा हैं और ये वलायती टच नहीं देसी पंजाबी गाना रब जाने। मैंने कहा वलायती टच के बाद अब हम देसी टच दे रहे हैं। गौर से सुनो सादिया, गौर से, मेरा मैसेज आप कभी नहीं पढ़ते। मसला क्या है? मुझे लगता है मसल क्या वहीं फेंक देती है, मैसेज मुझ तक आता नहीं है। सादिया जी मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, ये आज आया है ना, तो देखिए आप ऑन एयर पढ़ रहे। एक गाना आया है कोक स्टूडियो का, उसमें जोहरा वसीम। अच्छा जनाब ये गाना दिल जो है आप कह रही मेरे खास से कोक स्टूडियो का, ये प्ले मैं कर चुका हूँ, आज की क्यू शीट में तो शामिल नहीं है ये, नेक्स्ट किसी दिन, ठीक है ना। अच्छा जनाब शहरी शहरी लेडी की भी रिक्वेस्ट कर दी है नादिया मलिक ने, क्या बात है। इस दौर के गाने नो डाउट बहुत ही एटीज के नाइन्टीज के आज भी लोगों को याद है। और संजीदा कह रही है सॉन्ग प्ले करने के माहिर है। अरे कहां माहिर है सरकार, सीख रहा हूं मैं तो भी जिस तरतीब से प्ले कर रहे हो। वाह चलिए इसी बात पे ये ट्रैक जरा चेक करें आप।

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और मैसेजेस भी काफी सारे। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, लाइव आप नहीं आते, मैं बहुत मिस करता हूँ। अरे सरकार कहाँ मिस कर, कोई मिस को बोले कि भाई आपको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, लाइव आया हूँ, जेंटलमैन को क्या। इरफान भाई कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाले किसी प्रोग्राम में आ जाऊँ, ठीक हो गया। और इसके अलावा मदिया जी वालेकुम अस्सलाम, शुरू से शो सुन रही हूँ और मैसेज अब किया। चले कोई बात नहीं जनाब, और बहुत एंजॉय करें, चले जनाब इसी तरह एंजॉय करते रहें। और इसी बात पर एक और ट्रैक, और संजीदा जी को भी गाने पसंद आ रहे हैं भाई, ये वाला गाना इनको पसंद आ गया, बहुत शुक्रिया। और आई होप कि ये ट्रैक भी आपको पसंद आएगा।

0: AM. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam Karachi ki takleef
0: and HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: FM247365 FM247365 FM100
3: 31 saal FM100 aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.
4: Active.
5: Yummy.
4: Jonathan 7.
6: Say I've got a crush on you.
7: Alright, now welcome back to the FM 100. और साथ साथ messages आपके पहुँच रहे हैं 3636 पर. और तला हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं आज भाई, तला भाई बहुत तारीफ कर दी आपने, मैं ऑन एयर पढ़ते हुए मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ. सीरियसली ऐसा कुछ नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं. वो कह रहे हैं कि एक दफा एफएम 100 लगाने और खास तौर पे अयाज आपका शो, तो किसी और स्टेशन को सुनने का दिल ही नहीं करता. सॉन्ग सिलेक्शन कमाल है और यूनिक गाने आपके शो में सुनने को मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते. बड़ी मेहरबानी तला भाई, बहुत शुक्रिया, प्यार है आपका. और दूसरी बात, मैं अक्सर कहता रहता हूँ यार, बात ये होती है कि बाज लोग बस आके शो करने आ जाते हैं, मैं जरा दिल से गाने वाने भी जरा क्यू शीट खुद बनाते हैं, जरा मेहनत होती है. वैसे तो सारे बनाते होंगे यार, सभी मेहनत करते हैं. पसंद की भी बात होती है तला भाई, ये भी हो सकता है बुजुर्ग लोग होंगे वो बोले क्या गाने लगा रहा है यार, यंगस्टर्स के हिसाब से तो सही ही है. लेकिन मैं वैसे कोशिश करता हूँ हर उम्र के जो लोग हैं वो मेरे शो को एंजॉय करें और सुने, गाने भी उनको पसंद आए. नाइस सॉन्ग जरी नूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. इसी बात पर जो है एक और ट्रैक की जाने बढ़ते हैं.

क्या बात है जनाब, वैसे तो इस गाने को पता नहीं कितने लोगों ने रिमिक्स किया है, लेकिन यार ये वाला अब तक का सबसे बेस्ट मुझे लगा ये। जरा उन्होंने अपना स्टाइल भी रखा है और नाज़िया हसन तो फिर क्या ही कहने, वो तो फिर क्लासिक है, लेकिन बहुत आला भाई। अच्छा जी हुमा कह रही मुझे भी गाने पसंद आ रहे हैं ये वाले, भाई हुमा जी क्या कहने, और कह रही है हॉट गाना है बिल्कुल जनाब, तंदूर में बैठ के बनाया लोगों ने, तंदूर में बैठते हुए ये गाना बनाया, बहुत हॉट बन गया ये। अच्छा जनाब हॉट गाने की बात हो रही थी, एक मेलोडियस ट्रैक में आपको सुनाता हूँ एक और, और अपना संजीदा जी क्या कहने, गाने जो है ना फुल टाइम पसंद आ रहे हैं इनको।

0: माय जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 अयाज अहमद के साथ। और पता नहीं कहां कहां से लोग सुनते हैं, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। अच्छा, वो यूके से जो है वो नादिया मलिक कह रही, बाकी सही कह रहे हैं कि आपके शो सुनने के बाद किसी और। यार नादिया बस करो, तुम लोग तो जानते हो इस वजह से तुम लोग सुनते रहते हो मुझे। मैं हमारी क्लास फेलो हूं इसलिए मैं कह रहा हूं उनको, मैं जानती नहीं, लेकिन वैसे भी इनके इनका बहुत शुक्रिया हौसला देने का भी। और गाने इनको पसंद आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात लगी मुझे। नादिया तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा गानों में। और कह रही सुबह को एक आती है, समिया सैफी का जिक्र शायद आप कर रही हैं, वो भी बहुत जबरदस्त शो करती है। और इसके अलावा तानिया हसन हमें सुन रही है। तानिया क्या हाल है आपके? और फरियाल जी भी सुन रही, फरियाल जी की हालत वाटा ठीक हो, खैरियत से हो? तो फरियाल की तरफ से गाना जो है वो तानिया हसन को डेडिकेट करना है। ठीक हो गया, मैं अभी थोड़ी सी देर में करता हूँ। और संजीदा कहनी वाकई जबरदस्त है, और बाकी कोशिश होती है हर तरह का सॉन्ग, मेलोडियस भी हो, फास्ट भी हो, हर तरह का म्यूजिक हो। और संजीदा जी सब समझ रही हैं, कह रही हैं कि मैं समझ रही हूँ। ओए होए क्या बात है जनाब, क्या बात है, बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं। एमन एमन जरा कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बड़े दिनों के बाद इनका मैसेज आ रहा है। अरे आपका सॉन्ग मेरे पास नहीं मौजूद, मैं कितना लाऊं? एमन जी खुद बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, किसी दिन हम इनको अपने शो में बुलाएंगे और इनसे लाइव जो है वो सुना करेंगे। सब क्यू शीट बनी हुई थी, इस वजह से जरा उसको फॉलो करना होता है। उम्मीद है कि आप समझ रही होंगी, वरना मैं ठग से आपका गाना लगा देता अभी। अच्छा जनाब, इमाम बख्श हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शो आपकी तरह नाइस हो रहा है, प्लीज इंतमाल अरेबिक ट्रैक। यार देखो वही वाली बात है, रिक्वेस्ट शो तो है नहीं, वरना मैं जरूर लगा लेता, जरूर लगा लेता। इमाम बख्श भाई आज जरा माफ करते मुझे, नेक्स्ट किसी शो में जरूर लगा दूंगा। अरे शुक्रिया की बात ही नहीं, शुक्रिया कह रही भाई। मैं तो कह रहा हूँ बस एक दो दिन में प्लान करें आप, बल्कि नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आपको बुलाते हैं और आपसे लाइव जो है ना वो यहाँ सुनेंगे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आवाज भाई एमन अजारा की, और इनसे गाने जो है इन्हीं के गाने इनसे गवाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से नाजिया हसन के गाने भी अच्छे गा लेती हैं। बस अब से आपने मुझे याद दिला दिया, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी क्यू शीट बनाऊंगा तो आपका एक जो ट्रैक है ना वो जरूर मैं रख दूंगा। डन हो गई बात। चले जनाब एक मिनट की ब्रेक, और उसके बाद तानिया जी को गाना डेडिकेट करना है। मिलते ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्वागत आनंद कराची की तकलीफ एंड एचपीएसआई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और एफएम 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active, yummy, adorable.

Right, जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ जनाब डेडिकेशंस भी जानी है. और फरियाल की तरफ से ये खूबसूरत ट्रैक तानिया जी आपके लिए.

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक और काफी सारे मैसेज आ गए हैं। अच्छा जी जफर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कह रहे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, गाने तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। जफर भाई बहुत शुक्रिया, गार्डन से मैसेज किया है। सरकार कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? और अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे मिजाज है? नौरीन तौसीफ भी आ गई। नौरीन जी आप बताएं कैसे मिजाज है? बहुत सारी दुआएं, थोड़ी देर लगी आने में, कोई ऐसी बात नहीं, आ गई यही बड़ी बात है, इस उम्र में थोड़ी देर लगती है, कोई मसला नहीं, आ जाए बस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोग्राम में शामिल हो जाए। अच्छा तानिया जी गाना पसंद आया कि नहीं, ये तो दसो तुसी मैनू। थैंक्स कल बता मैसेज कर दिया। अच्छा जनाब बातें जरा कम और ट्रैक्स में आज आपको जरा कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सुनाऊं। ओए होए होए, एक और हिट गाना। गाड़ी में तो आवाज थोड़ी ऊंची।

मैं जनाब सुन रहे एफएम 100 और क्या बात है इसके म्यूजिक की और क्या बात है इस ट्रैक की, आला भाई जबरदस्त। अच्छा जनाब गाना डेडिकेट करने को कह दिया है नौरीन तौसीफ ने संजू को, चले जनाब बिल्कुल मैं डेडिकेट कर दूंगा, आप शो बहुत अच्छा करते हैं आप। अरे सॉरी नौरीन, बस आपने भी फोन शुरू हो गई ना तारीफे करना, मैं शर्मा रहा हूँ नौरीन प्लीज। अच्छा भाई अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रहे हो और मुझे भी एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें जफर भाई, सारे गाने आपके लिए भाई। मुझे एक इंग्लिश सॉन्ग सुनना है, शायद आपको याद हो कैप्री सन में ये म्यूजिक बजता था फिल्म स्टार्ट होने से पहले। अब कौन सा मुझे क्या पता यार, कसम से मैं कैप्री सन में नहीं गया कभी, कैप्री सिर्फ मैंने ना मुंह धोने के लिए वो साबुन आता था वो इस्तेमाल किया। कैप्री सनमा कितने, निशांत और कैप्री ये दो बड़े अच्छे सनमा थे। निशांत में अलमत्ता कुछ वो मूवीज चलती थी इंग्लिश, वहां मैंने एक मूवी देखी थी डाई हार्ट, वो और एक टॉप गन, ये दो मूवीज मुझे याद है। ये निशांत सनमा पर कैप्री बिल्कुल बराबर में था, वहां जाना नहीं हुआ मेरे दोस्त। कौन सा गाना था कैप्री का मुझे बता दो, गाने का नाम बता दे कैप्री। कैसी कैसी फरमाइशें आती समझ नहीं आता मैं कैसे पूरी करूं। अच्छा जी फरियाल भी थैंक्स कह रही और तानिया जी क्या कहने, क्या कहने तानिया, तानिया जी आपके अंदर भी एक आर्ज छुपा हुआ है आपको पता नहीं चल रहा माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अच्छा जी एक मेरे बड़े फेवरेट हैं और उनका नाम है अली अजमत, जुनून वाले वही। हाँ भाई उन्होंने गाना बनाया, वीडियो तो बड़ी कमाल, गाना भी सही है। बड़े दिनों बाद अली अजमत का जो है ना ये ट्रैक मुझे सुनने को मिला है, तो आज मैंने अपनी क्यू शीट में शामिल कर लिया उसको, तो उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। क्या बात है वैसे इस गाने की भी?

हाँ जनाब, ये बात आपने सही की भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा भाई, अब जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आपको मैं जरा एक बहुत ही सुरीला मेलोडियस ट्रैक सुनाता हूँ, जिसमें जरा आपको शायरी भी मिलेगी सुनने को। और मेरे ख्याल से पहली दफा मैं ये गाना जो है अपने शो में प्ले कर रहा हूँ, जरा चेक करें आप।

0: है जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और क्या बात है जनाब, क्या माहौल बना दिया इस गाने ने भी। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक मुझे याद आ रहा है और काफी पुराना गाना। आपको याद हो टीवी शोज में अक्सर जो है ना नई सिंगर्स को भी जो है पीटीवी में इंट्रोड्यूस किया जाता था। मोइन अख्तर साहब का एक शो मैंने देखा था, बहुत बचपन की बात है। सीमा रिजवी की करके एक नाम की एक आर्टिस्ट आई थी और एक ही गाना उनका आया था, वो बहुत हिट हुआ था। उसके बाद फिर पता नहीं वो कहां गए। तो जरा नया स्टाइल से वही गाना मुझे आज जो है जब मैं क्यू शीट बना रहा था तो मुझे मिला और उसको भी मैंने अपनी क्यू शीट में शामिल कर लिया। तो उन सिंगर के लिए जो अब गायब हो गई है, याद आया
1: जैसे बरसों की पहचान
0: हो। हाय हाय, क्या बात है जनाब। तो इन्हीं आर्टिस्ट को डेडिकेट करते हैं।

जिंदा वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं और गयासुद्दीन बलबन खुश हो रहे हैं नाइस प्लेलिस्ट और तुझको देखा तो ऐसा लगा वो कह रहे हैं बहुत ही जबरदस्त पुराने तार छेड़ दिए इस उम्र में तार टूट भी जाते हैं बेटा ख्याल रखा करो गयासुद्दीन बलबन तारों का ख्याल रखो टेप लगाओ तारों काफी पुराने तार हैं इसके अलावा संजीदा क्या हाल है आपके बस ये तो गानों की बस पसंद करते जाते इतनी तारीफें कर दी मैं पढ़ते हुए मुझे जरा सा वो हो रहा है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और तानिया जी क्या कहने आप तानिया जी को भी जो है सीमा रिजवी का जो गाना है वो बहुत पसंद आया इतने दिनों बाद कोई गाना सुने तो यार वाकई वो अच्छा लगता भी है एक माहौल सा भी बन जाता और पुरानी बातें वो पुरानी यादें भी आने लग जाती अच्छा जरा सिलसिला इसी तरह का बना हुआ है जरा अच्छे अच्छे सुरीले गाने सुनने का तो एक और मेलोडियस ट्रैक मैं आपको सुनाता हूं और वो है कैसे

सुनूंगा जनाब, जितने गुलशन इकबाल में सुन रहे हैं उन सब के लिए ये गुलशन, गुलशन का खुदा हाफिज। पता नहीं कब बनेगी वो रोड, यूनिवर्सिटी रोड, वरना ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अच्छा ये गाना भी जो है आज प्ले होने से रह गया, थोड़ा सा सुना

भाई जनाब, ये एक और बड़ा जबरदस्त ट्रैक था, ये भी आज मैं आपको पूरा ना सुना सका, थोड़ा सा सुनाता हूँ और उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं।

रोहित जनाब इसी के साथ ही आया जहमत खुदे इजाजत इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान.

0: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: This program is brought to you by HPSL Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत
1: FM 247 365 FM 247 365

अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सोने। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुश आमदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक करेंगे, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, आज सजाएंगे महफिल। और आज की इस महफिल में हम मेलो ट्रैक्स सुनेंगे, आज गजलें नहीं सुनेंगे, गजल नुमा गीत सुनेंगे जिनकी शायरी बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि वज़्म में शायरी जरूर है। आप अपने पसंदीदा कलाम जो हैं, पसंदीदा इंतखाब जो हैं, वो आज के शो में शामिल कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि एच आई लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आज के शो में कोई टॉपिक नहीं होता है, बस एक ही टॉपिक होता है, सबको पता है, वो दिल के हवाले से होता है, दिल की बात के हवाले से होता है। और आज दिल के साथ साथ हम थोड़ी सी खुशबू के हवाले से भी बात करेंगे। दुनिया में सबसे खूबसूरत खुशबू कौन सी है? खुशबू। और दिल की बात तो जरूर होगी जनाब। अच्छा, आज के शो में खुसूसी तौर पर आपके इंतखाब जो हैं वो 4 चांद लगाते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी पसंदीदा शेर आपके दिल को जो छूता हो वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ इंतखाब आपको याद हैं, आप जौक रखते हैं शायरी का, तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब आप लोगों को तो मैं कह ही रहा हूं, तो शो का आगाज भी एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल से करते हैं। मेरे सामने से गुजरी, मुझे इसके अशार बहुत अच्छे लगे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक पशेमां सी हसरत मुझे सोचता है, एक पशेमान सी हसरत मुझे सोचता है, अब वही शहर मोहब्बत से मुझे सोचता है। मैं तो महदूद से लम्हों में मिली थी उससे, मैं तो महदूद से लम्हों में मिली थी उससे, फिर भी वो कितनी वजाहत से मुझे सोचता है। मैं तो महदूद से लम्हों में मिली थी उसको, फिर भी वो कितनी वजाहत से मुझे सोचता है। जिसने सोचा ही ना था हिज्र का मुमकिन होना, जिसने सोचा ही ना था हिज्र का मुमकिन होना, दुख में डूबी हुई हैरत से मुझे सोचता है। मैं तो मर जाऊं अगर सोचने लग जाऊं उसे, मैं तो मर जाऊं अगर सोचने लग जाऊं उसे, और वो कितनी सहूलत से मुझे सोचता है। गरचे अब तरके मरासिम को बहुत देर हुई, गरचे अब तरके मरासिम को बहुत देर हुई, अब भी वो मेरी इजाजत से मुझे सोचता है। कितना खुशफहम है वो शख्स कि हर मौसम में, कितना खुशफहम है वो शख्स कि हर मौसम में, एक नए रुख नई सूरत से मुझे सोचता है। नोशी गिलानी का ये इंतखाब आप लोगों की समातों की नजर किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि दिल की अगर बात की जाए तो दिल को एक बात जरूर कहनी चाहिए, हर एक को अपने दिल को एक बात जरूर कहनी चाहिए, और वो ये जो इस ट्रैक की सूरत में आप तक पहुंचा रहा हूं।

वेलकम बैक है ये सुनियो, संभल संभल ब्यूटीफुल ट्रैक है। और आज मैं चाहता हूं कि आप सबका मूड बहुत अच्छा रहे, हैं जी, मुस्कुराहट रहे आप सबके चेहरों पर। और ये दुआ भी है मेरी कि आप सबके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। सबसे पहले फीता जो काटा है जनाब, वो हमारे प्यारे से यूसुफ भाई ने पापोश से, चाची को, अरूसा को और तमाम सुनने वालों को मुझे भी सलाम कहा है। और एक शेर जो है वो कह रहे हैं कि आज सबके नाम करना चाहते हैं, मगर यूसुफ भाई आपका जो शेर है ना वो मुकम्मल मुझ तक नहीं पहुंचा है, बस आखिरी शायद एक दो लाइनें जो हैं वो यहां तक नहीं आई हैं। तो वो जो शेर आप पहुंचाना चाहते हैं, अगर बुरा ना मनाए तो दोबारा मैसेज कर दीजिए। राजा साहब का मैसेज आया और कहते हैं कि एक गली थी, जब उससे हम निकले ऐसा निकले जैसे दम निकले। हाय हाय जॉन साहब, मुर्शिद जॉन, क्या बात है जनाब। अच्छा एक बात भी मैं बताना चाहता हूं आपको, बताइए कि मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ शो होते हैं, जैसा कि आज के दिन थोड़ा सा शेर व शायरी के हवाले से बात होती है, दिल के हवाले से बात होती है, और ओल्डी गोल्डी क्लासिक में हम मुख्तलिफ पाकिस्तानी फिल्मों के पुराने ट्रैक्स आपकी समातों की नजर करते हैं, और उसके अलावा हल्ला गुल्ला चलता रहता है। तो आज के प्रोग्राम में मैं बड़ी दिल की बातें करता हूं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ आप लोगों को वाकयात भी बयान करता हूं, और किए हैं पहले के शोज में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकयात जो हैं वो हम पर गुजरे हैं। हमारा काम यहाँ ये होता है कि हम यहाँ पर बैठते हैं, हमारा एक तज्जिया होता है, एक तजर्बा होता है, कुछ पढ़ते भी हैं, गो के बड़े अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ लेते हैं वो आप लोगों की समातों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में लिटरेसी का रेट क्या है ये मेरा ख्याल है पढ़े लिखे लोगों को जरा कम पता है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो उनमें अगर हमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो अपने आप को अनमोल नहीं समझना चाहिए, हमेशा आजिज़ी इंसान में होनी चाहिए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं जितना भी बातें करता हूं, किस्से कहानियां सुनाता हूं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। बचपन हर एक का होता है, जवानी हर एक पर आती है, लड़कपन हर एक पर आता है, और हर एक की अपने अपने माजी की बहुत प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं। कोई बात किसी से मिल जाए, माजी याद आ जाए, लड़कपन याद आ जाए, बचपन याद आ जाए, तो चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। ऐसा है कि नहीं है, बताइएगा। तो अगर कोई अपने लड़कपन का जिक्र मुझसे करता है और वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, तो यकीन मानिए आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए होता है ये, ना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक होता है, मेरी कोई रुदात होती है। तो जी ये बात इस वजह से की कि आज बड़े किस्से सुनाऊंगा आपको। अच्छा भाई, हमारी प्यारी सी नौरीन बहना भी आ गई हैं, क्या बात है भाई, बड़े इंतखाब भी लेकर आई हैं। अरे वाह भाई वाह नौरीन बहना, आपके मैसेजेस देखकर संजू याद आ गई, उनके इंतखाब आते हैं, पहला दूसरा तीसरा, और अभी तक वैसे उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो खैर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आप कैसे हैं, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तनीन समातों के लिए। और कहती हैं कि मैं कीमती हूं, इतनी कीमती कि लोग मुझे पाकर खो देते हैं, वाह वाह, और फिर तलाश करते हैं ऐसे
जैसे किसी समंदर के जजीरे पर एक बूढ़ा शख्स अपने बचपन के दिन तलाश करता है। क्या बात की है। वैसे बात जो है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। इत्तफाक ऐसा है कि मैं भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था और कह रही है कि मेरा बहुत ही फेवरेट शो है ये। और एक बहुत खूबसूरत सा इक्तबास भी भेजा है मेरी प्यारी सी बहन, हम इसको जरूर शामिल करेंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन आपके अगर सलाम दुआ के मैसेजेस आए हैं तो उनको देखना बड़ा जरूरी है। अच्छा जनाब, एक फरमाइश भी है मेरी बहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फरमाइश भी शो में शामिल हो। हमारी प्यारी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई हैं और कहती हैं, सलाम कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। और वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। राजा जी कहते हैं कि नदीम भाई, कराची मुशायरा कहाँ होता है बता दीजिएगा। अरे कराची में बेतहाशा मुशायरे होते हैं जनाब, और बहुत ही जबरदस्त मुशायरा अगर आपने सुनना है तो हर साल मुनक्किद होता है एक्सपो सेंटर पर, जरूर जाइएगा। कोई टिकट नहीं होती है और बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन समा होता है वहां पर। बहुत बाजौक लोग आते हैं वहां पर, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, और आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप। और कब होता है इसका आप बहुत ही आसान सा तरीका है, इंटरनेट पर आप पता कर सकते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इसी बात पर जनाब एक बहुत ही मेलो सा ट्रैक आपको ओएसटी सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको मान लो ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होएगा। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर और नवीद भाई का मैसेज हो गया था। राजा साहब दोबारा आए हैं और कह रहे हैं एक जैसी उम्र कब तक हम बसर करेंगे, क्या इस पे बहस हमसे हजरत खजर करेंगे, ये कैसे तूने सोचा, ये कैसे तूने माना, तू हम सफर ना होगा और हम सफर करेंगे। फॉर ऑल लिसनर अच्छा है, अच्छा है, गुड है भाई राजा साहब, क्या बात है। फरहान रजा भाई आ गए हैं जनाब और कहते हैं तमाम ही काबिल एहतराम समातों को फरहान रजा की जानिब से दिल की गहराइयों से सलाम और खुश आमदीद। मिजाज अकदस की नुजहत शगुफ्तगी बस दस्तूर मुस्तहदम है या गर्दिश आयाम ने कुछ मलाल पैदा किया है। क्या बात है भाई, अजी उर्दू है भाई, मजा आ रहा है। मिजाज अकदस की नुजहत शगुफ्तगी बदस्तूर मुस्तहदम है या गर्दिश आयाम ने कुछ मलाल पैदा किया है, सवाल किया है उन्होंने। भाई गर्दिश आयाम जो है ना वो उसने मलाल जो है वो हर पाकिस्तानी के जिंदगी में किया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन हम जो है वो मुस्कुराहटें बिखेरते हैं कि पाकिस्तानी जो आवाम है, मैं कौम नहीं कहता हूं बहुत माजरत के साथ, पाकिस्तानी आवाम को सिल्यूट है मेरा एक लिहाज से। ये मैं आपके छोटे से मैसेज पर, बाकी भी इन्होंने मैसेज किया लेकिन मैं पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं। पाकिस्तानी आवाम को जो है मैं सिल्यूट क्यों करता हूं यार, इनमें बर्दाश्त इतनी ज्यादा है कि क्या बात है कि महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, काम ना होने के बराबर है, लेकिन जिंदगी ऐसी रवा दवा है कि क्या बात है, ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। रोड्स पर जो है ट्रैफिक जैम चल रही है, लगता है पेट्रोल फ्री में बट रहा है। रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो वेटिंग में खड़ा होना पड़ता है खाना खाने के लिए, इतना रश है। अच्छा ये बड़े बड़े होटल्स, छोटे छोटे होटल्स, दरमियाने टाइप के होटल्स, यानी कि मैं मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास और अपर क्लास के हवाले से बात कर रहा हूं, हर जगह रश है। तो मतलब एक किसी स्कूल के जमाने में हमने उफरान भाई पढ़ा था तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तलब का मतलब ये है कि हमें जो चीज चाहिए जिंदगी के लिए, जो जरूरत होती है, तो हम वो तलब जो होती है वो लोग मार्केट में लेकर आते हैं और हम उसको खरीदने के लिए चले जाते हैं और खरीद कर ले आते हैं, ठीक है जी। और

0: और जितनी तलब बढ़ती है रसद भी उतनी बढ़ती है, यानी कि कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लगती हैं जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है। तो अब डिमांड और सप्लाई का ये जो सिलसिला है उसमें मैं ये सिर्फ ये सोच रहा हूं कि सिलसिला रुक कैसे सकता है। वैसे एक मैंने एक दो दिन पहले की बात है, एक दो दिन से जो है कानों में कुछ बातें आ रही हैं कि इस वक्त पोजीशन ये आ गई है लोगों की कि जो लोग गोश्त खाते हैं वो अब 15-15 दिनों में खाने शुरू कर दिया। जिनके घर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन गोश्त पकता था, अब जो है वो उनके घर 10 दिन या 15 दिन के बाद पक रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो महीने में सिर्फ एक बार गोश्त बना रहे हैं। और मुर्गी का जहां तक ताल्लुक है इस वक्त वो बामे अरूज पर है। गोश्त का जो अल्टरनेट है वो मुर्गी की सूरत में, क्योंकि वो सस्ती है बनिस्बत गोश्त के, तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी तरह अल्टरनेट जो होता है, और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा लफ्ज यूज किया जाता है दुनिया में, जुगाड़िए। तो किसी न किसी तरीके से जुगाड़ के तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इसका इख्तिताम कहां पर होगा वो बड़ा जो है हौलनाक किस्म का मंजर है। अल्लाह ना आए, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान पर तो ये ना आए। कैसे नहीं आ सकता? ये सिर्फ एक सूरत में नहीं आ सकता कि हम आवाम जो हैं वो अगर एक कौम बन जाएं तो हो सकता है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो शायद कुछ हमसे बेहतर जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। खैर जी, मिजाजी अकदस के बारे में जो आपने पूछा और गर्दिश आयाम और मलाल से जो आपने पूछा फरहान रजा साहब, तो मेरे दिल में जो है वो एक सैल्यूट आ गया अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए। वो इसकी वजह से जो है इतना लंबा चौड़ा बोल दिया। और मेरी प्यारी सी अम्मी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी और सब अहबाब के लिए ढेरों सलामती की दुआएं। फरहान रजा फ्रॉम होम टाउन नवाबशाह। क्या बात है जनाब। और जनाब इनका एक इंतखाब, कहते हैं शायद ये जर्फ है जो खामोश हूं अब तक। सुन रहे हैं आप? शायद ये जर्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। हाय हाय हाय हाय हाय। एक बार फिर सईद रवानी के साथ पढ़ते हैं भैया। शायद ये जर्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। वाह वाह वाह वाह। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। यार क्या बात है यार फरहान रजा, ये शेर तो मेरे पर होना चाहिए मेरा ख्याल है।
1: ये सुर और लय में होना चाहिए।
0: जरा करूं कुछ। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है जरा बताइएगा नदीम भाई यहां पे जरा। शायद ये जर्फ है जो खामोश हूं अब तक, शायद ये जर्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब मालूम है सारे अब तक। इसका बनाएंगे कुछ। वाह वाह वाह। शायद ये जर्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो सारे ऐब भी मालूम है, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। जब जुर्म मेरी जात से

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मुर्तजा कजलबाश का ट्रैक सुना आपने प्यार में और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा भाई, हमारी प्यारी सी बहना जरीन नून ने एक फरमाइश भी कही है और कह रही है जबरदस्त कलेक्शन, वाह भाई अभी तक तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग लगाए नदीम भाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आपने तारीफ कर दी है तो इसी बात पर आपका एक इंतखाब जो है वो शामिल करते हैं। कहती हैं कि उसका गम काम कर गया कुछ कुछ, मैं तो फिर से बिखर गया कुछ कुछ, सिर्फ इल्जाम है बेवफाई का, इश्क वालों के सर गया कुछ कुछ। उसके अल्फाज हैं कि नश्तर हैं, मैं तो अंदर से ही मर गया कुछ कुछ, सबर आया है और ना आएगा, वक्त गरचे गुजर गया कुछ कुछ। नजरें उसने भी फेर ली मुझसे, दिल तो मेरा भी भर गया कुछ कुछ। बहलावे यार में वो बैठ गया, मैं तो जान से ही गुजर गया कुछ कुछ। जेरे लब ही कहा था कुछ उसने, मैं तो नाहक बिफर गया कुछ कुछ। वक्त का नाम भी तो मरहम है, जख्म गहरा था भर गया कुछ कुछ। एक मुद्दत के बाद देखा है, हुस्न उसका निखर गया कुछ कुछ। सिर्फ तेवर ही उसने बदले थे और शायद मैं भी डर गया कुछ कुछ कुछ कुछ। अच्छा जनाब, हमारे हाँ जी

जनाब फरीन कहती है कोई नई चोट फिर से खाओ उदास लोगो, कहा था किसने कि मुस्कुराओ उदास लोगो, गुजर रही हैं गली से फिर मातमी हवाएं, केवाड़ खोलो दिए बुझाओ उदास लोगो, जो रात मुक्तिल में बाल खोले उतर रही थी, जो रात मक्तल में बाल खोले उतर रही थी, वो रात कैसी रही सुनाओ उदास लोगो, कहां तलक बामों दर चरागां किए रखोगे, कहां तलक बामे दरो चरागां किए रखोगे, बिछड़ने वालों को भूल जाओ उदास लोगो, उजाड़ जंगल डरी फिजाएं हांपती हवाएं, यहीं कहीं बस्तियां बसाओ उदास लोगो, ये किसने सहमी हुई फिजा में हमें पुकारा, ये किसने आवाज दी कि आओ उदास लोगो, ये जहां गवाने की रुत यूं ही रायगा ना जाए, ये जहां गवाने की रुत यूं ही रायगा न जाए, सरे सना कोई सर सजाओ उदास लोगो, उसी की बातों से ही तबीयत संभल सकेगी, कहीं से मोहसिन को ढूंढ लाओ उदास लोगो। भाई क्या बात है भाई, मोहसिन नकवी साहब की क्या ही बात है, और फरहान भाई ने एक मोहसिन साहब का एक बहुत ही जबरदस्त सा इंतखाब भेजा था, तो वो तो मुझे लग रहा था कि मुझ पर ही है, उसको मैं आखिर में दोबारा से जो है वो शो में शामिल करूंगा, लेकिन उनका एक और इंतखाब आया है और शायर हैं उसके अहमद सलमान साहब, और कहते हैं कि नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, उसके अंजील से चेहरे पे जबूरी आंखें, छोड़ आया हूं किसी आंख में बिनाई को और बचा लाया हूं चेहरे पे अधूरी आंखें, एक जादू है सभी का कई मंत्र, लेकिन सब गो हैं कहीं नीली कहीं भूरी आंखें, उसको पहलू में बिठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें। अहमद सलमान साहब, अच्छा भाई इनको अच्छा लगा, मजा आ गया, वाह जी वाह कहा हमारे फरहान भाई ने, फरहान भाई बस दिल पर खूब गया है ये आपका इंतखाब। नौरीन बहना कहती हैं, अच्छा नौरीन बहना कह नहीं, नहीं कुछ इंतखाब भेजा है, नौरीन तौसीफ हो नदीम भाई, गलती हो गई होगी, जुबान फिसल गई होगी मेरी बहन नौरीन बहन, जरीन नूर और आपके नाम में मैं अक्सर जो है ना गबल्ला कर जाता हूँ, बहुत माजरत, लेकिन आप दोनों मेरी प्यारी सी बहनें, यानी कि समझ रही हैं ना आप तो आपके इस इंतखाब को भी शामिल करेंगे। एक और ओएसटी की जाने बढ़ते हैं, और ये बड़ा जबरदस्त सा ओएसटी है, मुझे बड़ा पसंद है और उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगा, यार इसकी कॉम्पोजिशन मुझे बहुत पसंद है, और ये ड्रामा एक आया था यूं ही स्पिरिचुअलिटी पर था थोड़ा, और बड़ा जबरदस्त ड्रामा था, मैंने इसको फॉलो भी किया था, शैगल और समी साहब ने गाया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, समाप्त फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रैक पसंद आया होगा। अच्छा भाई, नवीद साहब कहां सो गए हैं भाई? और राजा साहब तुसी भी गायब हो गए हो।

हाँ, हम जरा हिज्जे कर रहे थे। हमारी जरीन नूर बहना जो हैं, उन्होंने एक शेर भेजा है, कह रही हैं, कर तो लिया है दर्द की लहरों का सामान, लेकिन हमारी रूह के बखिये उदड़ गए। हाय हाय हाय हाय, अच्छा शेर है, टची शेर है। और जनाब नौरीन बहना आज फुल जो है फॉर्म में है माशाल्लाह से, अच्छी बात है। और उन्होंने एक इंतखाब भेजा है, कहती हैं, ये कब कहा कि आप अभी बात कीजिए, ये कब कहा कि आप अभी बात कीजिए, जब दिले जब दिल करे जनाब तभी बात कीजिए, मसरूफ हैं हम आप ही के इंतजार में, हम गोश पर आवाज अजीब बात कीजिए, अशकों को छोड़िए कि ये आंखों का हुस्न है, जो कर रहे हैं आप वही बात कीजिए। क्या बात है, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो।

ताहिरा मसूद आ गई हैं। कैसी हैं ताहिरा? ठीक ठाक हैं। और आज के शो में तो आप कभी कभार जरूर आती हैं। जीती रहें, मुस्कुराती रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक इंतखाब भी भेजा है और ताहिरा का हम इंतखाब भी शामिल करेंगे। कहती हैं, अच्छा हुआ मैं दश्ते गुमा से निकल गया, अच्छा हुआ मैं दश्ते गुमा से निकल गया, थी कैद ता हयात जहां से निकल गया। वाह, भाया न फिर किसी को मेरा बोलना वहां, दिल में दबाया सच जो जुबां से निकल गया। दिल को करेगा चार यकीनी पे, दिल को करेगा चारे यकीनी ये बात है, ये तीर बेरुखी का कमान से निकल गया। मत सोग मनाओ कि बहुत खुश हूं मैं यहां, जब से मैं जिंदगी के फुगा से निकल गया। चलता रहेगा कारे जहां जानता हूं मैं, क्या फर्क मैं जो तेरे मकां से निकल गया। पूरा था एतबार बहारों पे इसलिए, यादों को तेरी लेके खजां से निकल गया। आप कहां निकल रहे हैं? ये बात कब थी दोस्तों एक मौजज़े से कम, मैं इश्क में किसी भी जुबां से निकल गया। छोड़ा था जान बूझ के पालेगा वो सुराख, रखकर सहल पांव निशां से गुजर गया।

खुर्रम सुहेल साहब का ये इंतखाब है, बहुत खूब जनाब। गुफरान भाई आप कहीं जा रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जनाब, तायरा कहती है मेरी भतीजी पैदा हुई है आज, माशाल्लाह से 10 दिन की हो गई है। माशाल्लाह भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी भतीजी के बहुत खूबसूरत और प्यारे रोशन नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। इमाम बख्श सयाल साहब भी आ गए हैं टंडोजाम से और कह रहे हैं नदीम भाई शो आपकी तरह लाजवाब है, अंता मुअल्लिम अरबिक ट्रैक नहीं चल सकता। उसकी वजह है कि आज जो है मेलो गीत चल रहे हैं और शेर शायरी का दौर है। लवली ब्रदर आ गए हैं, कहाँ गायब थे आप लोग भाई? लवली आप भी गायब थे, इमाम बख्श साहब भी बड़ी देर से आए, लगता है मसरूफ थे। और कहते हैं वंडरफुल प्रोग्राम, शायरी इंतखाब दिल नशीन, जबरदस्त कमाल है। लवली थैंक यू वेरी मच। वैसे नाम आपका, आपने जो अपना रखा है ये बहुत अच्छा नाम है, लेकिन जो ओरिजिनल नाम होगा ना वो भी कभी लिख दीजिएगा, हम आपको पुकारेंगे लवली ब्रदर के नाम से ही। सलाम भी कहा था इन्होंने। और फरहान भाई ने कुछ और भी भेजा है, फरहान भाई वो भी शामिल करते हैं। गुल साहब आ गए हैं।

और कहते हैं कि तूने, कहते हैं कि तू जिसे प्यार समझ बैठा है, ये कोई खेल भी हो सकता है। तू जिसे प्यार समझ बैठा है, ये कोई खेल भी हो सकता है। इश्क के इम्तिहान में मेरी जान, आदमी फेल भी हो सकता है। क्या बात है जनाब। हाय सो स्वीट यार। कहते हैं कि लुत्फ अब शायरी में आने लगा, वो मेरे शेर गुनगुनाने लगा। एक शेर तो गुनगुनाऊंगा मैं, वैसे उसका मैं बिल्कुल गुनगुनाने वाला कोई ना कोई बनाऊंगा। फरहान भाई ने जो मोहसिन नकवी साहब का भेजा है, दिल ये चाहता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, एक गजल की जानिब चलते हैं। बड़ी प्यारी सी गजल है और उम्मीद करता हूं आप सबको भी पसंद आएगी। और ये गजल जनाब डेडिकेट करते हैं, अभी मेरे सामने नाम है फरहीन का, दुबई में होती हैं, तो फरहीन की जानिब से आप सबको।

वेलकम बैक कहेंगे रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। हाय हाय इसी बात पर जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आवला है मुझे। हम सफर चाहिए हजूम नहीं, हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। कोहकन हो के कैस हो के फराज, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे। उम्मीद करता हूं कि ये इंतखाब आपको पसंद आया होगा। खैर हम भी अपनी जानिब से कुछ ना कुछ आपको, यानी कि समझ रहे हैं ना, भेज देते हैं आपकी समातों तक। इमाम भाई कहते हैं कि भाई जान आप हंसी मजाक वाला प्रोग्राम करो या रोने वाला प्रोग्राम, आप पर सूट नहीं करता। अच्छा भाई हम रो तो नहीं रहे, प्यार की बातें कर रहे हैं, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, दिल की बातें कर रहे हैं, अभी हमने खुशबू की बात नहीं की, वो भी करेंगे। और रोने धोने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है भाई, सब आपकी तरह थोड़ी है यार। बहुत से लोगों ने दिल लगाया हुआ है और दिल की बातें जब दिल से की जाए तो यानी कि समझ रहे हैं ना, अपना एक मजा है इसका। ताहिरा ने फहमी बदायूनी का एक इंतखाब भेजा है, कहती हैं सांप भी बीन भी मदारी भी, हाय क्या बात है तुम्हारी भी। कैसे करते हो यार माइक पर शायरी भी दुकानदारी भी, हम वली तो नहीं खुदा से मगर जान पहचान है हमारी भी। सिर्फ दिल का मामला ही नहीं, इश्क है एक जिम्मेदारी भी। हार कर फूल तेरी खुशबू से, हार कर फूल तेरी खुशबू से ढूंढ लेते हैं रिश्तेदारी भी। वाह वाह खुशबू आ गई भाई। वो जो पिछली कतार में खुश था, आ गई आज उसकी बारी भी। हम कभी एक साथ करते थे खाकसारी भी शह सवारी भी, आप खामोशियां भी सुनते हैं, आह सुन लीजिए हमारी भी। भाई आखिरी शेर बहुत ही कमाल का है इसका, आप खामोशियां भी सुनते हैं, आह सुन लीजिए हमारी भी। आय हाय हाय भाई बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। गुल साहब क्या कहते हैं गजलियात का आज बज़्म-ए शायरी में, गजलियात का इंतखाब लाजवाब है और कह रहे हैं मेरे बकिया अशआर भी तो शामिल कीजिए जनाब। बिल्कुल कर लेते हैं जनाब, अभी भी कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं, कहां गए। और वो इनके जाहिर पसंदीदा जो शायर हैं ना इनके, हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब के, उनको शामिल करना है भाई हमने। अरे भाई इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अहमद मुश्ताक साहब का तो हमने इंतखाब शामिल कर लिया था, अब जो है वो इनके पसंदीदा शायर जो है मोहियुद्दीन हमदम साहब का एक कता है, अंजाम चाहे देखना इंसान का अगर, अच्छा अब ये उर्दू में कुछ जे जबर पेश आगे पीछे हो जाती है, उर्दू रस्मुल खत में अगर लिखा जाता है तो,
انجام چاہیں دیکھنا انسان کا اگر ان ساکنے شہر خاموشاں کو دیکھیں، بچتا تھا جن کے نام کا ڈنکا جہاں میں، بے نام ان کے گور غریباں کو دیکھیں۔ واہ واہ واہ، بہت گہرا ہے بھائی۔ اور کہتے ہیں الہی زندگی اب کس طرح ہوگی بسر اپنی، گزرتی ہے مسلسل کرب میں شام و سحر اپنی، کٹی ہے عمر ساری جب دعائیں مانگتے تجھ سے، پتا کہ زیست آخر کیوں رہی پھر ہے سمر اپنی۔ اب میرے والد محترم اور تمام سننے والوں کو انہوں نے پیار بھرا سلام کہا ہے جی، بہت بہت شکریہ علیم الدین صاحب۔

तो जनाब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक है और ये ओएसटी है जनाब, और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, सही नाम लिया ना, फैसलाबाद में रहती हैं, वहां पर मौसम बदल रहा है, तो मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ की जानिब से आप सबके लिए।

वेलकम बैक सुनियो, तू मेरा इश्क है और इश्क भी आखिरी ट्रैक सुना आपने और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आप केशा स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर, और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे से इंतखाब भी आ रहे हैं। फरहान भाई कहां रह गए आप? भाई फरहान भाई का एक इंतखाब जो है वो हमने शामिल करना है, पहले मेरा ख्याल है वो करेंगे तो उसके बाद दोबारा वो इंतखाब भेजेंगे। तो कहते हैं कि कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजे बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहां कांधा बदलता है। रिहाई मिल तो जाती है परिंदे को मगर इतनी, सफाई की गर्ज से जब कभी पिंजरा बदलता है। मेरी आंखों को पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मेरी आंखों को पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, नहीं मैं वो नहीं जो रोजे आईना बदलता है। अजब जिद्दी मुसव्विर है जरा पहचान की खातिर, मेरी तस्वीर का हर रोज वो चेहरा बदलता है। वसीम नादिर साहब का ये इंतखाब भेजा है। अच्छा भाई 3636 पर फरियाल का मैसेज आया है और अस्सलाम वालेकुम, शो उनको अच्छा लग रहा है और गाने भी अच्छे लग रहे हैं, शायरी भी अच्छी लग रही है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नए नए लिसनर आ रहे हैं भाई। फरियाल आपको हम वेलकम कहेंगे शो में, थैंक यू वेरी मच। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ कह रही हैं शुक्रिया नदीम भाई। एक और इंतखाब इनका शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं, वो सुनिए। हाय हाय

वेलकम बैक कहेंगे तेरी सांसों में बह गए हम। अच्छा भाई, हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सर आप शुक्रिया अदा ना किया करें, ये मेरी मोहब्बत है कि आप लोगों के तमाम मैसेजेस शामिल करता हूँ। और लवली कहते हैं कि खुशबू का फूल से क्या रिश्ता है कहते हो, हमारा नाम पूछकर जनाब क्यों शर्मिंदा करते हो। हाय हाय क्या बात की है। अच्छा ताहिरा मसूद ने भी एक मेरा ख्याल है इंतखाब भेजा है, और हमारे गुल साहब ने भी भेजा है, शामिल करेंगे अभी, और फरहान भाई का भी इंतखाब है। वक्त बड़ा यार महदूद सा रह गया, मैं चर्चा नहीं कर रहा भाई। हाँ भाई चर्चा करेंगे तो फिर वो यानी कि समझ रहे ना आप, वक्त कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो अरे वसीम नादिर साहब का ये तो हमने इंतखाब पढ़ लिया था, और अब जो है एक इंतखाब किसी का रह गया था। हाँ हाँ हाँ हाँ क्या बात है जनाब, ये गजल का एक गजल जो है वो भेजी है हमें गुल साहब ने, और कह रहे हैं कि इसका भरपूर तरीके से लुत्फ उठाइए, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे भाई, मुझे पता है कि वो हम मुझे बहुत अच्छी लगेगी, तो लिहाजा थोड़ा सा इंतजार कीजिए गुल साहब। और ताहिरा मसूद का जो है वो हम इंतखाब आपकी समातों की नजर करते हैं। कहती हैं दो घड़ी मांगी जहां जीने की फुर्सत हमने, जिंदगी को ये लगा की है शिकायत हमने, जिससे लड़ता हूं उसे आप मना लेता हूं, खूब बदली है तेरे बाद ये आदत हमने। बहुत खूब, जाने क्या हाल तेरे बाद हुआ, जाने क्या हाल तेरे बाद हुआ हो अपना, तेरे जाते ही क्या खुद को भी रुखसत किया, खुद को भी रुखसत हमने। एक ही शख्स पे मौकिफ जहां क्या करना, दिल को बहकाया बहुत लाख की मिन्नत हमने। कट गए यूं ही तेरे हिजर में सब माह और साल, एक सूरत के सिवा देखी ना सूरत हमने। यूं ही इल्जाम ना दे देख भले यारों को, किसी नासा की सुनी कब है नसीहत हमने। वाह वाह वाह वाह, बड़े अरसे बाद ये नासा जुमला जो है ये पढ़ा है मैंने। बेच आती हैं हमें रोज हमारी सांसें, अपने होने की चुकाई बड़ी कीमत हमने। एक दुनिया हमें पहले भी यहां जानती थी, बस तेरे गम ही से पाई नहीं शोहरत हमने। वाह वाह, अपने हालात पे हंसते हैं बहुत हंसते हैं, कैसी कमजर्फ ये पाई है तबीयत हमने। वाह वाह वाह, अपने हालात पे हंसते हैं बहुत हंसते हैं,

क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक, मुझे बड़ा पसंद है भाई, और पता नहीं आपको पसंद आया हो या नहीं। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हमारे प्यारे से गुल साहब ने एक गजल भेजी है महशर आफरीदी साहब की, तो वो आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं, जरा सुनिएगा, मजा आएगा आपको भी। इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए, इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे बपे मेरी समातों ने के अब, इतने सन्नाटे बपे मेरी समातों ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। ख्वाब कुछ ऐसे दिखाए हैं फकीरी ने मुझे, ये आखिरी जो चंद अशार हैं मुझे बहुत पसंद आए। ख्वाब कुछ ऐसे दिखाए हैं फकीरी ने मुझे, जिनकी ताबीर में शाहों के खजाने लग जाएं। वाह वाह, और आखिरी शेर तो कमाल का है जनाब, खुसूसी तौर पर जो 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा ये शेर, उनकी नजर करता हूं मैं, कि मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। क्या बात है, और मजा आया वाकई। थैंक यू वेरी मच गुल साहब, भरपूर पार्टिसिपेशन का, और दो गाने आपको सुनाने हैं भाई, जरूरी सुनाने हैं। तो पहला गाना जो है ये आप लोगों को सबको ही बहुत पसंद है, मैंने जब भी चलाया है, जाफर साहब का काविश का यानी कि, तो आई होप यू लाइक इट। हेलो फड़ो, ये ट्रैक जब भी मैं सुनता हूं पता नहीं क्यों उदास हो जाता हूं मैं, हालांकि उदासी की कोई कहानी है नहीं, मगर मैं दूसरों का दर्द महसूस करता हूं जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है, खुसूसी तौर पर ये ट्रैक उनको डेडिकेट करता हूं।

क्या बात है भाई, हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ कह रही है नदीम भाई मेरा भी फेवरेट है। अच्छी बात है, हमें पता भी है। खैर जी, हल्का फुल्का सा आज शो किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और अब जो है वो साइन आउट का टाइम आ गया है, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जनाब अब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक और बहुत खूबसूरत सा ट्रैक आप सबकी समातों की नजर। और अगर जाग रहे हैं तो सुनते रहिएगा, बहुत अच्छी शीट बनाई हुई है मैंने, बाद में जितने भी गाने चलेंगे उम्मीद करता हूं कोई ना कोई तो आपको जरूर पसंद आएगा इनमें से। इस ट्रैक के साथ ही जनाब अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.